0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दोस्त लोग, सवेरे सवेरे आ गेल बाड़ी राव रेडियो दोस्त दीपाली, आ करे तरी रउआ सब के सुप्रभात प्रणाम। ठीक सोचनी श्रोता लोग, कार्यक्रम है आपन दी आपन देखभाल। दोस्त लोग, सवेरे सवेरे हम रउआ से ना मिली तबले ई लग भी ना करेला कि सवेर भइल बा। तो दोस्त लोग, सवेर तो हो गइल बा, तो चली यही के साथ शुरुआत कई जाओ अपना प्रोग्राम के। हम बताई आज के हेल्थ टिप्स। दोस्त लोग, आज जानल जाए सबसे पहले पाइनएप्पल यानी अनानास के घरेलू नुस्खा। एसिडिटी में पाइनएप्पल के जूस के सेवन करी, ये एंजाइम से भरल होला। खाए के बाद अगर पेट अधिक भरल व भारी महसूस हो रहा हो के, तो आधा ग्लास ताजा अनानास के जूस पी। सारा बेचैनी और एसिडिटी इसे खत्म हो जाई। पाइनएप्पल के अपना डाइट में इस्तेमाल कर बढ़त उम्र के साथ कमजोरी, चक्कर आइल और अनिद्रा के भगावल जा सकेला। रोग से लड़े के क्षमता बढ़ावे खातिर अनानास के जूस लाभकारी है। पथरी के मरीज के अनानास जूस लेवे के कहल जाला, ताकि आगे और स्टोन ना बने। अनानास में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होला, ऐसे दृष्टि दोष दूर होला। अनानास के जूस के मिश्रण कुछ मिनट तक आँख के नीचे लगा के रखे से काफी फायदा होला। तो दोस्तों, चलिए अब जानल जाओ सौंदर्य के लाजवाब घरेलू नुस्खा। एगो पपीता के टुकड़ा चेहरा पर रगड़े से चेहरा चमकदार होला। कच्चा दूध में बादाम पीस के मिलाई, आ ई पेस्ट के नियमित रूप से चेहरा पर मले से चेहरा आकर्षण लागेला। शकरकंदी के उबाले के पश्चात बचल पानी से फटल होखल एड़ी धोए से ओ ठीक होला। बाल के काला करे खातिर लौकी बहुत उपयोगी होला। तिल या जैतून के तेल में लौकी के रस मिला के थोड़ा देर धूप में रखी, फिर बाल में हल्का हाथ से मालिश करी। इसे बाल के जड़ मजबूत हुई और ई बाल लंबा हुई। गोभी के पत्ता के पीस के ओई के रस में थोड़ा सा शहद मिला के चेहरा पर लगाई और ई सूखे पर धोली। इसे त्वचा के खुश्की व कालापन कम होला। पालक के काट के उबाल ली आ ई पानी के हल्का हाथ से चेहरा पर लगाई। इसे त्वचा में निखार आई। खीरा के रस में थोड़ा सा दूध मिला के चेहरा पर लगावे से रंग साफ होला। खीरा के टुकड़ा के चेहरा पर रगड़े से चेहरा के दाग धब्बा कील मुहासा व छाई कम होला। श्रोता दोस्त, ई तरह है सौंदर्य के लजबाब घरेलू नुस्खा। चलिए अब हम बतावे जात बानी कुछ उपयोगी घरेलू नुस्खा। बथुआ के भाजी के पानी में उबाल के वो पानी से हाथ पैर धोए से त्वचा मुलायम हो जाला। बच्चा के सर्दी लग जाए तो ओ लोग के हाथ पैर के नाखून पर ब्रांडी लगाई और छाती व पीठ पर भी ब्रांडी लगा के मालिश करे से सर्दी के असर मिट जाला। शिशु के पतला दस्त लाग रहा लोके तो बड़ा हरड़ ठंडा पानी में घीस के एक छोटा चम्मच भर सुबह दोपहर शाम के पिलावे से पाचन क्रिया सुधर जाला। और पतला दस्त लागल बंद हो जाला। अगर कब्ज होके तो बड़ा हरड़ गर्म पानी में घीस के छोटा चम्मच भर दिन में दो बार ई दो तीन दिन तक लेवे से कब्ज मिट जाला। नाभि में प्रतिदिन तेल या शुद्ध घी रात के लगा के सूते से होठ ना फाटेला। होठ मुलायम चमकीला व गुलाबी हो जाला। तो दोस्त लोग, आप चली हम बता दी चक्कर आवे तक का करे के चाहिए। कभी कभी केहू के भी चक्कर आवेला। बैठे रहे के बाद उठे पर आँख के सामने अंधेरा छा जाला और ई चक्कर आवेला। इस स्थिति में एक सफल सिद्ध नुस्खा हम बतावे जातानी। एगो कड़वा सूखा लंबा या गोल लौकी या तुम्बी जौन पकावे के बाद अपने आप सूख चुकल होके लेके एके डंठल के तरफ से काट दी ताकि अंदर के पोला यानी खोखलापन दिखाई दे। एकरा

0: इन्हें ऊपर तक पानी भर के 12 घंटा तक रखी, फिर हिला के पानी निकाल के साफ कपड़ा से दो बार छान ली। ये पानी के ऐसन बर्तन में भरी जिमे राउर नाक डूब सके। नाक डुबा के इमे खूब जोर से सांस खींची ताकि पानी नाक से अंदर चढ़ जाए। दिन भर नाक से पानी टपकत रही। पानी खींचे के बाद नाक नीचा करके आराम करी। ये उपाय से ये व्याधि सदा खातिर नष्ट हो जाए। तो चलिए अब जानल जाओ अखरोट के अचूक फायदा के बारे में। बच्चा के बहुत ज्यादा क्रीमी हो गए लोग के तो उ लोग के रोज एगो अखरोट की गिरी खिलाई, ऐसे सारा क्रीमी मल के रास्ता से बाहर आ जाए। छिलका और गिरी सहित अखरोट के बारीक पीस ली और रोज सुबह शाम ठंडा पानी के साथ लगातार 15 दिन तक एक एक चम्मच ली, पथरी मूत्र मार्ग से बाहर आ जाए। अखरोट के तेल लगावे से दांत खाज में बहुत फायदा मिलेगा। बच्चा के बिस्तर गीला करे के आदत छुड़ावे खातिर बच्चा के रोज सूते से पहले 2 अखरोट और 15 किशमिश खिलाएं। प्रयोग करके देखी बच्चा की आदत अपने आप छूट जाए। एक एक खाए से नर्वस सिस्टम की फायदा और दिमाग की तरावट मिलेगा। अखरोट के साथ कुछ बादाम और मुनाका खाई व एकरा ऊपर से दूध पिए से वृद्धा के बहुत फायदा मिलेगा। अखरोट खाए में थोड़ा सावधानी रखे के चाहिए क्योंकि अखरोट गर्मी करेला और कफ बढ़ावेला। ऐसे एक बार में 5 से ज्यादा अखरोट ना खाएं। ज्यादा अखरोट खाए से पित्त बढ़े की संभावना रहेला, जिसे मुंह में छाला, गला में खुश्की या खुजली और अजीर्ण होके की संभावना रहेला। तो दोस्तों चलिए अब जानल जाओ एलर्जी से बचे की कुछ घरेलू नुस्खा। धूल मिट्टी से नाक में एलर्जी हो जाला तो इस सब परेशानी खातिर चलिए हम बता देते नहीं कुछ नुस्खा। सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपर और मिश्री ये सब द्रव के चूर्ण 10-10 ग्राम, बीज निकालल होखल मुनाका 50 ग्राम, गोदंती हरताल भस्म 10 ग्राम। और तुलसी के 10 पत्ती इस सब के मिला के खूब घोंट के पीस ली और 3-3 रत्ती के गोली बना के छाया में सुखा ली। सुबह व 2 गोली शाम के गर्म पानी के साथ 3 माह तक सेवन करें। ठंडा पदार्थ, बर्फ, दही, ठंडा पेय से परहेज करें। इसे नाक की एलर्जी दूर हो जाए। तो दोस्तों ई रहल है आज के आपन कार्यक्रम आपन दे आपन देखभाल। अब दी इजाजत दीपाली के जाए के, फिर हम लेके आए कल कुछ दूसर नुस्खा। नमस्कार।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा,
3: मैं बनूंगा,
4: मैं भी बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ऑनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमर जेड पर।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
6: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
5: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
1: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
7: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: लाक्षाग्रह से बच निकलने के बाद पांडव जंगलों में भटकने के लिए मजबूर थे। एक रात जब भीम पहरा दे रहा था तो अचानक उसने हिडिंबा को सामने पाया। वो आई तो भीम का शिकार करने थी, लेकिन उसको देखते ही प्रेम में पड़ गए। प्रेम, समझते हैं ना, प्रेम। मैंने हिडिंबा के कठोर मन को प्रेम में मोम की तरह पिघलते देखा। मैं वो आंख हूं जो मन के अंदर भी झांक सकती है, बाहर भी। मैं आकाश हूं। भीम के जीवन में पहली बार कोई स्त्री आई, लेकिन उसके लिए अपनों की सुरक्षा सबसे पहले थी। इसीलिए वो हिडिंबा को आगे बढ़ने से रोकना चाहता था।
10: अरे तू पागल हो गई है हिडिंबा, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय मेरा परिवार संकट में है। मैं तुम्हारा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। यहां मेरे भाई हैं, मां है, मैं उनकी रक्षा करूं या तुम्हारे साथ विवाह करूं? और फिर मैं तो ये भी नहीं जानता कि तू है कौन, कहां से आई है और मेरे साथ क्यों विवाह करना चाहती है।
11: मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है कुमार, मैं राक्षसी हूँ। मेरे भाई हिडिम ने मुझे तुम्हारा शिकार करने के लिए भेजा था, पर तुम्हारा ये रूप देखकर मेरा हृदय मेरे वश में ही नहीं रहा।
10: अच्छा, तो तू राक्षसी है, तो चल फिर मेरा शिकार ही कर ले। यदि ऐसा करने में सफल हो गई तो अच्छा है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम तो नहीं कर सकता।
11: नहीं, मुझे तुमसे प्रेम ही चाहिए, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ।
10: हे ईश्वर, कहीं तू सपना तो नहीं देख रही ना? कैसे बताऊं तुझे कि मैं, देख, अगर तेरे भाई को पता चल गया कि तुम मुझे मारने की जगह मेरे प्रेम में पड़ गई है, तो तेरा राक्षस भाई तुझे मार डालेगा।
11: तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं अपने भाई से भी लड़ जाऊंगी। देखो, वो इधर ही आ रहा है। सुनो, तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। जाओ, भागो। देखो, मैं तुम्हारा प्रेम नहीं पा सकती तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें ऐसे मरते नहीं देख सकती।
12: हिडिंबा, क्या कर रही है तू? हिडिंबा, इसे आहार बनाने के बदले तू प्रेम कर रही है। तुझे तो मैं, आज तू नहीं बचेगी मेरे हाथों।
11: नहीं भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई।
10: दुष्ट राक्षस स्त्री पर हाथ उठाता है, लज्जा नहीं आती तुझे?
12: लज्जा तो तुझे आनी चाहिए, मेरी बहन को प्रेम के जाल में फंसा रहा है। ये तो मरेगी और तू भी मरेगा।
10: वाह, तो इतना ही महाबली है, तो आ जा, दो दो हाथ कर ले मुझसे, मेरा भी अभ्यास हो जाएगा।
12: मुझसे युद्ध करेगा? महाराक्षस हिडिंब से युद्ध करेगा? इस वन के राजा से युद्ध करेगा तू?
11: नहीं भाई हिडिंब, इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। गलती तो मुझसे हुई है, इस बेचारे का क्या अपराध है?
12: नीच, हट जा मेरे सामने से।
11: नहीं भाई, नहीं, छोड़ दो भाई, भाई छोड़ दो इसे।
12: ये ले।
13: युधिष्ठिर, अर्जुन, ये क्या हो रहा है? कैसी आवाज है ये? और भीम कहाँ है?
10: भीम कहाँ? अरे वो भीम ही तो है।
13: ईश्वर, ये तो युद्ध कर रहा है। अरे पकड़ो उसको, कोई रोको। भीम पुत्र, पुत्र रुक जाओ।
10: तुम वहीं रहना माँ, मैं इसे मार कर आता हूँ।
13: अरे पर क्यों मारने पर तुला है इसे भीम?
10: इसने स्त्री पर हाथ उठाया माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
12: अब छोड़ दो भीम।
13: पुत्र बस कर।
12: तुम रुको भीम, इस राक्षस का वध मुझे करने दो।
10: नहीं अर्जुन, आगे मत बढ़ना। इसने अपराध मेरे सामने किया, इसे दंड भी मैं ही दूंगा। तुझे तो
12: छोड़ दो भीम, अब छोड़ भी तो दो इसे।
10: लो, छोड़ दिया।
11: भैया, उठो भैया,
12: मेरे प्राण,
11: उठो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ भाई, अब किसकी सहारे जीऊंगी? ये तुमने क्या किया भाई, मुझे क्षमा कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्षमा कर दो भाई।
13: भीम, भीम ये क्या किया तुमने?
10: क्रोध मत करो माँ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। वो तो भैया ने कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया।
13: तो फिर इतनी शक्ति दिखाने की क्या आवश्यकता थी?
12: आपने तो इसे उठाकर चट्टान पर पटक दिया, जीवित कैसे बचता बेचारा?
10: मैं तो बस इसे दंड देना चाहता था, मुझे क्या पता कि ये मर ही जाएगा।
13: पुत्री, पुत्री रो मत, मैं तुम्हारा दुख समझ रही हूँ।
11: अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ माँ, कहाँ जाऊँ मैं?
13: पुत्री, हम भला क्या सहारा दे तुम्हें, हम तो खुद ही बेसहारा भटक रहे हैं। तुम ही बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं।
11: मैंने आपके पुत्र भीम को अपना पति मान लिया है माता, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझ पर दया कीजिए माता। चुप क्यों हो गई माँ? यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी समय अपने प्राण दे दूंगी।
13: नहीं नहीं, मेरे पैर मत पड़ो पुत्री, मुझे सोचना पड़ेगा।
11: ठीक है, आप सोच ले, मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हूँ।
14: सेवक, वासुदेव को ससम्मान यथोचित आसन दिया गया है ना?
15: जी महात्मा विदुर, वो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं।
16: मुझे सम्मान और सेवा नहीं चाहिए तात विदुर, मैं यहाँ बस सूचना देने आया था।
14: आपको तो सूचना मिल ही गई होगी वासुदेव, मुझे विश्वास है कि सूचना का सत्य भी आपको ज्ञात हो गया होगा।
16: असंख्य असत्यों के बीच छुपे सत्य को ढूंढना बहुत मुश्किल है तात। मैं राजमहल में आने से पूर्व हस्तिनापुर के प्रजा से मिला, अनगिनत सूचनाएं मिली, बहुत कुछ जाना, पर अभी भी बहुत कुछ जानना शेष रह गया।
14: आप क्या जानना चाहते हैं वासुदेव?
16: प्रमाण, मुझे पांडवों और बुआ कुंती की मृत्यु का प्रमाण चाहिए।
14: क्यों, जो प्रमाण मिले हैं उन पर आपको अविश्वास है?
16: नहीं, छह शरीरों के अध जले अस्थियों से ये बिल्कुल सिद्ध नहीं होता कि पांडव अब इस लोक में नहीं है। अस्थियों की संख्या प्रमाण नहीं होती तात।
14: वो भवन लाख से बना था वासुदेव, सारे प्रमाण उसके साथ ही भस्म हो गए।
16: हस्तिनापुर के वातावरण में विष घुला था, पांडव सुरक्षित नहीं थे, न्याय और अन्याय का अघोषित युद्ध पहले से ही आरंभ हो चुका था। ऐसे युद्ध में क्या पांडव इतने असावधान हो सकते थे कि वो मृत्यु का वरण करने लाक्षक ग्रह चले जाएं?
14: सत्य कह रहे हैं माधव, वेद व्यास ने भी कहा है कि यदि हस्तिनापुर की सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए तो वे पांडवों को शून्य से भी प्रकट कर सकते हैं।
16: अर्थात पांडव और मेरी बुआ किसी शून्य में सुरक्षित है?
14: संभव है माधव, परंतु अभी प्रश्न उनकी सुरक्षा का है। यदि महर्षि व्यास की बात सत्य भी हो जाए तो क्या वो हस्तिनापुर में सुरक्षित रह पाएंगे?
16: आपका प्रश्न सही है तात, परंतु अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करना होगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन देना होगा। उनकी शक्ति का उद्घोष ही महाराज रुद्राष्ट्र और दुर्योधन को भयभीत कर सकता है।
14: आपकी बातों से तो लग रहा है वासुदेव, जैसे आप निश्चित हैं कि पांडव सुरक्षित हैं और वे हस्तिनापुर आने वाले हैं।
9: हाँ, बाकी सब तो ठीक है, पर ये बात समझ में नहीं आई कि वेद व्यास ने ये क्यों कहा कि वो समय आने पर पांडवों को प्रकट कर सकते हैं। खैर, अभी तो सारी मुश्किल कुंती की थी, क्योंकि हिडिंबा के भाग्य का फैसला उन्हें ही करना था।
10: क्या हम हिडिंबा के साथ हस्तिनापुर लौट चलें? यह असंभव है माता। हमारे हस्तिनापुर लौटने का अर्थ है विद्रोह। जिन कौरवों ने हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते।
13: तो ठीक है, चाहे हम जहां भी रहें, हिडिंबा हमारे साथ रहेगी। तुम्हें इसके संबंध में अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है भीम।
11: मैं वचन देती हूँ माता कि मैं जैसे सुख में साथ रहूंगी, वैसे दुख में भी रहूंगी।
10: ये लीजिए माँ, अब तो हिडिंबा ने वचन भी दे दिया।
17: माँ, अब तो भैया का विवाह कर ही दीजिए।
18: और भैया भीम, मनुष्यों में ऐसी शक्ति और सौंदर्य का संयोग आपको ढूंढे नहीं मिलेगा।
10: यहाँ वन में विवाह का भोज नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम में कुछ बुद्धि है या नहीं? बड़ा भाई अविवाहित हो तो अनुज विवाह कर भी कैसे सकता है? विवाह ही करना है तो बड़े भैया से करवाए थे।
11: मेरे प्रेम का अपमान ना करे स्वामी, मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। मेरा प्रेम आप है, मैं या तो आपकी बनूंगी या मृत्यु के गले लग जाऊंगी।
13: सुना तुम सबने, ये राक्षस कुल की कन्या है, पर इसमें भी प्रेम, समर्पण और आत्मसम्मान सब कुछ है।
10: अरे ये तुम किस मुंह में पड़ गई माता, हिडिंबा की बातों में आकर अन्न जल भी भूल गई।
19: हाँ माँ, आपको तो प्यास लगी थी।
13: हिडिंबा का भाई मारा गया है, उसका इस संसार में कोई नहीं बचा। ऐसे में मैं भूख प्यास के बारे में कैसे सोच सकती हूँ पुत्र?
19: पर यदि भीम इससे विवाह भी कर ले तो इसे रखेगा कहाँ?
13: तुम ही बताओ युधिष्ठिर, क्या करना चाहिए?
19: धर्म के अनुसार हम इसे असहाय नहीं छोड़ सकते।
13: मैं भी यही कह रही हूँ, मैं मानवता की बात कर रही हूँ।
19: पर कहीं हिडिंबा राजकुल की बहू बनने के लालच में?
11: मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैंने जैसे अपना पति माना है वो कोई राजकुंवर है। मैं तो बस कुमार भीम से उनके जैसे एक पुत्र की कामना करती हूँ जो मेरे जीने का बहाना बन जाए।
13: तो ठीक है, भीमसेन तुम्हारे साथ 2 वर्षों तक रहेगा, तब तक तुम इसके बच्चे की माता भी बन जाओगी।
19: और तुम्हें अपने पुत्र को युद्ध कला के साथ मानवीय संस्कार देने होंगे, उसे भरत वंश के योग्य बनाना होगा।
13: पुत्री तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें ये स्वीकार नहीं?
11: भीम भी तो चुप है माता, क्या पुत्र का जन्म और उसका पालन पोषण सब मैं अकेली ही करूंगी?
20: अरे अरे, राज मुकुट का अपमान, ये क्या कर रहे हो भांजे?
21: नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो राज मुकुट जो मेरा होकर भी कभी मेरा नहीं है।
9: अब दुर्योधन बेचैन था कि जब पांडव मर ही गए हैं तो उसे युवराज बनाने में देर क्यों हो रही है भैया? पांडवों के लिए आंसू की नदियां बहा देने के बाद भी राज मुकुट उसे मुंह चिढ़ा रहा है। पर बाकी सब लोगों के हिसाब से इस शोक के माहौल में दुर्योधन का अभिषेक करना ठीक नहीं था। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं तब हम दुर्योधन हो जाते हैं, और जब खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हैं, तब कृष्ण। पता नहीं कृष्ण को कैसे सच का आभास हो गया, पर वो सिर्फ ये देखने हस्तिनापुर पहुंचे कि किसके मन में क्या चल रहा है। सुनते रहिए

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला

0: सामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर, किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707065।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम, एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी, गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
10: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
10: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
10: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
10: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
12: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला जज ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। शिक्षक निर्वाचन को लेकर मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की तैयारी शुरू। 1 महीने तक अभियान चलाकर मतदाताओं का किया जाएगा निरीक्षण। उद्यमी योजना के चिन्हित लाभार्थियों को मिली प्रथम किस्त। पैरा खिलाड़ी ने जीता गोल्ड मेडल और मजदूरों का कराया गया रेस्क्यू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला जज श्रीमती गीता गुप्ता की अध्यक्षता में आज बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान गोपालगंज सदर प्रखंड के कटघरवा पंचायत के खाप मकसूदपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता गुप्ता ने तमाम न्यायिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी। बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2026 के सफल और सुचारू संचालन को लेकर जिले में प्रतिनियुक्त मतदान दल के पदाधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू किया जाएगा, इसकी तैयारी कर ली गई है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 16 अक्टूबर को अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक जिला परिषद गोपालगंज के सभागार में आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस दौरान पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी तथा माइक्रो ऑब्जर्वर के कार्य एवं दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इधर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के आदेश के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के उपरांत निर्वाचक सूची में छूटे हुए तथा युवा और प्रथम बार पात्र मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 11 अक्टूबर से 1 महीने तक का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत BLO द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण से पूर्व की निर्वाचक सूची और वर्तमान निर्वाचक सूची का मिलान कर ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा जो पूर्व की सूची में शामिल थे लेकिन वर्तमान सूची में सम्मिलित नहीं है। चिन्हित मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा और अहर्ता पाए जाने पर प्रपत्र 6 के माध्यम से अनिवार्य रूप से निर्वाचक सूची में पंजीकरण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अंतिम रूप से चयनित एवं प्रथम चरण के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए पटना के बापू सभागार में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें MSME केंद्र का उद्घाटन करने के साथ ही चयनित लाभुकों के बीच योजना के प्रथम किस्त की राशि का वितरण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी गोपालगंज एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और चयनित अभ्यर्थियों को उद्यम स्थापना, वित्तीय सहायता के समुचित उपयोग एवं परियोजना संचालन हिस्सा लिया और चयनित अभ्यर्थियों को उद्यम स्थापना वित्तीय सहायता के समुचित उपयोग एवं परियोजना संचालन से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। जिला पदाधिकारी ने लाभुकों को निर्धारित परियोजना के अनुरूप राशि का उपयोग करते हुए अपने उद्यम को सफलता पूर्वक संचालित करने की शुभकामनाएं दी तथा संबंधित अधिकारियों को लाभुकों को आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। उचका गांव प्रखंड के नीतीश सिंह ने पैरा ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य देश और जिले का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि उनके इस उपलब्धि के पीछे गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का सराहनीय सहयोग रहा है। नीतीश सिंह ने गोपालगंज के सांसद का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गोपालगंज के सांसद से पैरा ओलंपिक गेम में खेलने के लिए किट का सहयोग मांगा था। किट की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है और उन्हें किट उपलब्ध कराने में गोपालगंज के सांसद ने अहम भूमिका निभाई थी और उसी किट से उन्होंने तैयारी की और अपने मेहनत के दम पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्र का नाम रोशन किया। इसके बाद उन्होंने गोपालगंज के सांसद का आभार व्यक्त किया। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में बैकुंठपुर के लगभग दर्जन भर मजदूर फंसे हुए थे। उन्होंने वीडियो जारी कर बैकुंठपुर के विधायक, सरकार के शिक्षा मंत्री और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक से सहायता की गुहार लगाई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया में भी इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी और सरकार के शिक्षा मंत्री और बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी ने इस वीडियो के आधार पर मामले का संज्ञान लिया और पुलिस अधीक्षक ने रतलाम के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की, जिसके बाद रतलाम पुलिस उन मजदूरों से संपर्क कर सुरक्षित उनका रेस्क्यू कराई और वहां से मुक्त कराकर सभी मजदूर

0: को ट्रेन में बिठाकर उनके गृह जिला गोपालगंज के लिए रवाना किया गया। मजदूरों ने गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी और बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी का आभार व्यक्त किया। हथुआ थाना क्षेत्र में एक युवती से मारपीट करने और चाकू का भय दिखाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी सिराज अहमद उर्फ नामू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह रूपंचक प्रीतम शाह के टोला निवासी जमीर अंसारी का पुत्र है। गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ करने के बाद आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 के लंबित सीएमआर के समतुल्य अवशेष धान की राशि संबंधित पैक्स समिति के कैश क्रेडिट खाते में 13/10/2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराने का निर्देश दिया गया है। सभी शाखा प्रबंधक और पैक्स के अध्यक्ष तथा प्रबंधकों को यह राशि जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया है। हथुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने 88 लीटर देशी शराब के साथ दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और एक ई रिक्शा भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई छोटा कोइरली के पास की। यहां ई रिक्शा को पकड़ा गया, इसके अंदर से शराब मिली, जिसके बाद इस मामले में अंकुश पटेल पिता उमेश पटेल और गोविंद कुमार यादव पिता योगेंद्र चौधरी, ये दोनों साकिन गंभीरपुर थाना नौतन जिला सिवान के निवासी हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी ई रिक्शा और शराब को जब्त कर दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त सुरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह रघुनाथ यादव के पुत्र हैं और बथुआ महुआ टोला निवासी बताए जा रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी जयचंद शाह उर्फ जयचंद गोड़ बताया जा रहा है, जो बढ़वा का निवासी है। पहले से इस पर मामला दर्ज था। पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करते हुए आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज गोपालगंज में इंडी गठबंधन के तमाम अलायंस पार्टनरों ने सरकार के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद यहां गोपालगंज में जिला पुलिस अलर्ट थी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी चौक चौराहों पर तमाम पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को तैनात किया गया था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को संपन्न कराया जा सके और प्रशासन की सक्रियता से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इस दौरान जोरदार तरीके से इंडी गठबंधन के तमाम अलायंस पार्टनर के नेताओं ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और केंद्र सरकार के नेताओं का पुतला दहन भी किया। उचका गांव थाना की पुलिस ने भी 115 लीटर से अधिक देशी शराब को जब्त किया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि वाहन जांच करते हुए पुलिस ने उचका गांव के नवादा परसौनी के पास नदी के किनारे झाड़ी से 115 लीटर से अधिक देशी शराब को बरामद किया, जिसे जब्त किया गया है। इस दौरान तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए आवश्यक अनुसंधान शुरू कर दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला जज ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। शिक्षक निर्वाचन को लेकर मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की तैयारी शुरू। एक महीने तक अभियान चलाकर मतदाताओं का किया जाएगा निरीक्षण। उद्यमी योजना के चिन्हित लाभार्थियों को मिली प्रथम किस्त। पैरा खिलाड़ी ने जीता गोल्ड मेडल और मजदूरों का कराया गया रेस्क्यू। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
11: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
11: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
11: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: एक रंग इश्क का।
13: पिछले पन्नों में आपने जाना कि किस तरह मीनल एक सीधी सी बात को इनकार करने गई थी और डेविड के सामने आते ही उसका इनकार इकरार में तब्दील हो गया। पेंटिंग का जो काम वो गाये बगाये किया करती थी उसमें पूरी शिद्दत से कामयाब होने को मचल उठी थी। क्या इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में कोई और तस्वीर भी उभरने वाली है? ये तो तभी मालूम होगा जब पलटेंगे अगला पन्ना इश्क का। हाय, आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। पेंटिंग कंपटीशन का नया बखेड़ा जो खड़ा हुआ था उससे मीनल परेशान थी। तो अमिया का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान को पार कर चुका था। मीनल की बातों से वो इतनी ज्यादा जज्बे में आ गई थी कि आज वो कई पेंटिंग आर्टिस्ट को पीछे छोड़ सकती थी। आज अमिया के मन में उसके जैसा कलाकार दुनिया में था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मीनल इस उलझन में थी कि अगर पेंटिंग कंपटीशन में कुछ बनाना हुआ तो वो क्या बनाएगी। पूरा पेंटिंग डिपार्टमेंट होगा, आर्ट्स के अलग अलग सेक्शन वाले स्टूडेंट्स होंगे, कुछ इतिहास और अर्थशास्त्र के भी होंगे जिन्हें शायद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा पेंटिंग्स में, पर देखने वाले तो कई सेक्शन से आएंगे। कुछ उसके हिंदी सेक्शन वाले भी होंगे। उस शिवानी से भी तो अच्छी पेंटिंग बनानी होगी। ये स्कूल का कंपटीशन तो है नहीं कि जहाँ आम, केला, अमरूद बनाया और टीचर ने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बनाई हो। यहाँ तो कई दिग्गज होंगे। हफ्ता भर यही सब उधेड़बुन में रही कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ अच्छा बनेगा या नहीं। बीच बीच में आंखों में रखी हुई मीनल और शिवानी की जलन भी एक दूसरे से टकरा जाती थी। पर अब शिवानी पहले की तरह मीनल से बदतमीजी से बात नहीं करती थी, थोड़ी शांत सी हो गई थी। पर क्या ये किसी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा था? क्योंकि शिवानी इतनी जल्दी सुधर जाए, अपने ऊपर हुए अपमान को भूल जाए, ऐसी तो लड़की नहीं थी। रही बात मीनल की तो वो बस वर्तमान में जीना पसंद करती थी। उसके लिए शिवानी अभी कुछ कर नहीं रही थी तो सब सही था। इस हफ्ते के दौरान मीनल जब डेविड के सामने आती तो एकदम शांत दिखने की कोशिश करती और उसके जाते ही कुछ अलग से ख्यालों में खोई सी रहती थी। डेविड ने भी कुछ कुछ बातें महसूस की थी कि मीनल आजकल कुछ खामोश सी है। इस तरह वक्त गुजरा और वो कंपटीशन की सुबह आ गई। सारे प्रतिभागी अपने अपने रंगों के साथ मैदान में पहुंच चुके थे। पूरे कैंपस के गार्डन साइड पे जहां तहां लोग अपने बोर्ड और पेंट के साथ थे। जहां मीनल की दुविधा क्या बनाए इस बात की थी, वहीं अमिया इस बात से परेशान थी कि कहीं उसकी पेंटिंग की कोई कॉपी ना कर ले। अमिया ने बड़ी ही मेहनत के साथ बारीकी से अपने लिए कोना ढूंढ लिया था, पर आज उसका जज्बा किसी भी जंग को जीतने के लिए काफी था। पेंटिंग कंपटीशन को जज करने के लिए कई सुप्रसिद्ध पेंटर भी आए हुए थे। डेविड, जो खुद भी पेंटिंग की दुनिया का उभरता हुआ सितारा था, आज जजेस के साथ ही बैठा था। शिवानी ने पर्वत, नदियाँ वगैरह बनाने का सोचा जो काफी अच्छे से उसे आता था। वहीं मीनल ने सोचा कि वो दुनिया की तस्वीर बनाएगी, उसमें अपने रंग भरने की कोशिश करेगी। उसने पहले पेपर को अपने पसंदीदा लाल रंग से कवर किया, रंग हल्का ही रखा ताकि रंग चुभने से ज्यादा निखारने का काम करे, और फिर ड्रॉप बनाने लगी। उसने ब्रश की जगह अपनी उंगलियों को तरजीह दी। उंगलियों के सहारे ही हल्का और गाढ़ा रंग भरी जा रही थी। माहौल वहां का पूरा शांत था। सब अपनी अपनी चित्रकारी में लगे हुए थे। जजेस भी अपनी बातों के बताशे आपस में ही घोल रहे थे। रह रहकर डेविड की तारीफें चल रही थी कि उसने ये जो आर्ट को मॉडर्न रंग देने की कोशिश की है ये बहुत ही सुंदर है। डेविड खुश था। उसने जजेस को अपने साथ उसके केबिन में चलने की गुजारिश की। उधर शिवानी ने अपनी पेंटिंग को कंप्लीट किया और फिर अपनी सहेलियों के साथ बाकियों की कलाकारी देखने में मसरूफ हो गई। बड़ी ही अद्भुत थी सबकी चित्रकारी, पर शिवानी का निशाना कुछ और ही था। उसने देखा कि मीनल अपनी पेंटिंग को छोड़कर अमिया के पास खड़ी होकर उसकी पेंटिंग देख रही है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मीनल की पेंटिंग के पास पहुंच के उसी के ब्रश से इधर उधर रंग छिड़क दिया और फिर कपट भरी मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। और दूसरी तरफ मीनल अमिया से बात करने में मसरूफ थी। अमिया बड़ी खुश थी और उसने मीनल को बताया कि वो किसी पुराने बादशाह की तस्वीर बना रही है अंगूर खाते हुए। हालांकि उसकी पेंटिंग अभी अधूरी थी, पर उसकी अधूरी तस्वीर को देख के भी कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल था। मीनल ने अमिया के हौसले की तारीफ की और अपनी पेंटिंग के पास आ गई। यहाँ आते ही उसके होश फाख्ता हो गए थे।
14: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
14: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
15: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
16: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
16: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
16: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
17: ठक ठक।
18: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा मिला ही नहीं।
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
20: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
20: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
21: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
20: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
21: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
20: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
23: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
24: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
20: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
12: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
18: ये क्या हुआ, किसने किया ये?
13: उसका मन अब रुआसा सा था, पर जो हार जाए वो मीनल नहीं थी। मीनल ने सोचा कि वो नई पेंटिंग बना लेगी, पर तभी उसकी नजर उन तमाम रंगों पर पड़ी जिसकी टेढ़ी टेढ़ी लकीरें कुछ अलग सा ही बना रही थी। उसने तमाम लकीरों को अपनी उंगलियों के सहारे एक अलग रंग दिया और कुछ ना बनते हुए भी रंगों की एक खूबसूरत लकीर बन गई। तमाम जजेस अपनी नजर से सबकी तारीफ करने लगे, सभी की तस्वीरों को देखा। अमिया ने अपनी पेंटिंग बहुत ही उत्साहित होकर जजेस को दिखाई और जजेस से तारीफें सुनकर वो खुश से ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अंगूर खाते हुए बादशाह की जो तस्वीर अमिया ने बनाई थी उस पर जज साहब ने कहा, बहुत खूब, ये जो आसमान से लटके हुए गुब्बारे आपने बनाए हैं ना, ये कुछ खूब ही है। बेशक आप पेंटर नहीं है पता चलता है, लेकिन आपका ये जो ख्याल है दुनिया के नजरियों को उल्टा करने का, ये काबिले तारीफ है। अमिया सदमे में थी और मन ही मन सोच रही थी कि मैंने तो अंगूर खाने वाले बादशाह बनाए थे। ये बात सुनते ही मीनल की तो हंसी छूट गई, पर उसने खुद पर काबू करते हुए अमिया को शाबाशी दी। फिर सबकी तस्वीरों पर दो दो बात करते हुए जजेस चले गए और उन्होंने विनर्स की घोषणा कर दी। मीनल को उसके रंगों के अद्भुत इस्तेमाल के लिए कॉन्सोलेशन प्राइज मिला और बाकी तीनों पुरस्कार पेंटिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के हाथ लगे। मीनल को आज के हुए हादसे ने एक अलग ही जोश दिया था। आज की बात ने उसे जिंदगी का एक गहरा सबक सिखा दिया था कि जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों तो भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। इन सब में डेविड का साथ उसके लिए खास रहा। इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन ने मीनल में एक नया जोश और जज्बा भर दिया था। मीनल बहुत खुश थी। हल्की सी शाम थी जब डेविड मीनल के पास आया। उसने मीनल को शाबाशी दी और उसे कैंटीन में ट्रीट देने की बात भी की। मीनल उसकी दोस्त जैसी थी, हालांकि दोनों की उम्र में फर्क अच्छा खासा था, पर फिर भी ये दोस्ती खास थी। मीनल ने भी इनकार नहीं किया और डेविड ने उसे कहा कि वो अमिया और शिवानी को भी लेकर आए। शिवानी? मीनल ने मन ही मन सोचा, खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो शिवानी के पास गई और जाकर बोली कि डेविड सर ने आपको भी बुलाया है कैंटीन में ट्रीट के लिए। शिवानी बड़े ही दिल से मीनल का हाथ पकड़कर बोली, मीनल मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की जबकि तुमने कभी भी मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। मैंने आज भी तुम्हारी पेंटिंग पर बात करने की कोशिश की। ये सुनते ही मीनल थोड़ा चौंकी, पर खुद को संभालते हुए वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, पुराना सब भूल जाते हैं एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। पीछे से अमिया ने मीनल के कान में बोला, बच के रहना, नागिन है ये, डसेगी जरूर। फिर शिवानी ने अमिया की तरफ देखकर बोला कि अमिया तुम भी मुझे माफ कर दो ना, हम सब साथ में दोस्ती रखेंगे। इस पे अमिया तबाक से बोली, देखा मीनल, मैं ना कहती थी कि शिवानी उतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम सोचा करती थी। फिर तीनों कैंटीन की तरफ चल दी। वहां कैंटीन में बातों बातों में शिवानी ने कहा कि डेविड सर मेरी आज तारीफ हुई है और मीनल से दोस्ती भी, तो इस बात पे मेरे घर पे एक अच्छी सी हाउस पार्टी बनती है ना। मैं मीनल, अमिया और बाकी फ्रेंड्स को तो इनवाइट कर ही रही हूँ, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। तुषार सर और कपिल सर भी आ रहे हैं। डेविड ने भी ये सुनकर हामी भर दी। क्या ये कोई षड्यंत्र था या शिवानी सच में सुधर चुकी थी, ये तो अगले कुछ पन्नों में पता चल ही जाएगा। पर फिलहाल जो पन्ना मीनल की डायरी में उस दिन का था वो कुछ ऐसा था। तमाम रंग हसरत का मैंने लुटा दिया, एक रंग लाल ने मुझको बना दिया। क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों खुद में हमने खुद की दुनिया बना लिया। डेविड से मीनल के कुछ धड़कते जज्बों की बातें अभी बाकी हैं और ये पन्ना भी पलटा जाएगा तब जब पढ़ेंगे और रंगेंगे एक रंग इश्क का।
12: एक रंग इश्क का।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
10: जा रही।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 अमरजैट पर।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
2: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
3: दूर दूराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गाँव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
2: ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही है। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग, जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टनचावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
3: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सेना में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रिको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
2: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
1: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
2: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
1: कहाँ?
2: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
3: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
4: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
3: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
4: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
3: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
4: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल

0: है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए।

0: आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
1: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
6: ऑनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AM पर।

0: साथ ही प्रधानाचार्यों को भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव ने 30 अक्टूबर तक ई शिक्षा कोष पर रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त करने का निर्देश भी दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने दरभंगा जिले के कीरतपुर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की छत को लकड़ी की बेंच, डेस्क और ईंटों के सहारे अस्थायी रूप से टिकाए रखने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। NHRC ने दरभंगा के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में GST परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to rupees 10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: GST परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST परिषद द्वारा अनुमोदित GST सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार GST को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4,92,000 से अधिक मतदाता हैं, जबकि 4 शिक्षक निर्वाचन के लिए 40,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। NDA विधायक दल की बैठक आज पटना में मुख्यमंत्री आवास पर होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में घटक दलों के विधायक, विधान पार्षद और सांसद शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही NDA नेताओं के साझा चुनाव

0: प्रतिशत तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं की एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे के डोणजे स्थित उनके फार्म हाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि ये दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ है।
1: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
2: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
3: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पटना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्पष्ट किया है कि समान उत्पाद के मनमाने तरीके से दोहरी कीमत निर्धारित कर उपभोक्ताओं का शोषण नहीं किया जा सकता। आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार ने इस मामले में एक शिकायत के संबंध में सिनेमाघर परिसर में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की ज्यादा कीमत वसूले जाने को अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार माना है। आयोग ने इस मामले में सिनेपॉलिश, सिनेमा हॉल और शीतल पेय कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए संयुक्त रूप से निर्देश दिया कि वे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अथवा अन्य उत्पाद को खुले बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत पर बेचने की प्रथा बंद करें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि सुधा दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए असम में 1,00,000 लीटर वाली डेयरी यूनिट लगाई जाएगी। उन्होंने तेजपुर में 20,000 लीटर क्षमता वाले दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि डेयरी यूनिट के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मौके पर कम्फेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक शीर्षद कपिल अशोक भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के बनने से पूर्वोत्तर राज्यों में सुधा का नेटवर्क मजबूत होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। मौसम विभाग ने आज सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले में धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
4: दिनांक 9 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: सारण जिले में बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मकेर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक सुभाष कुमार को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है कार्यपालक अभियंता नारद के घर मिले 52 लाख नगद। दैनिक जागरण NIA की कार्रवाई पर लिखता है जाली नोट सिंडिकेट के 12 ठिकानों पर छापेमारी। मधुबनी में हीरा महासेठ उर्फ चाची के यहाँ NIA का धावा। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है बिहार में 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाएंगे। प्रभात खबर की सुर्खी है SIR के खिलाफ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालय भवनों की सुरक्षा ऑडिट कराएगी, जर्जर स्कूल भवन होंगे नष्ट। बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन। केंद्र सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। और पटना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सिनेमा हॉल मालिकों और शीतल पेय कंपनियों को उत्पादों की बिक्री प्रचलित कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6550।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार
2: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
1: हाँ मैडम, मैं 11 बजे से ट्राई कर रहा था, आई लव यू। मैं भी डेली रेडियो रंजीम सुनता हूँ और बहुत इच्छा थी कि मेरी भी एक गाना बज जाए, लेकिन आज वो इच्छा पूरी हो गई। मेरा गाना है प्रसन्न वदनम सौभाग्यदा, संस्कृत श्लोक है
2: जी।
1: इसको प्लीज बजा दीजिएगा, मैं ये खुद सुनना चाहता हूँ और रेडियो रंजीम के ऑल लिसनर को मैं सुनाना चाहता हूँ।
2: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मेरा नाम धनंजय कुशवाहा, कैलगढ़, बिहार।
2: जी जी, गाना किसको सुनवाना है?
1: गाना मैं रेडियो रिमझिम के ऑल लिसनर को सुनाऊंगा और मैं खुद सुनूंगा और आपको भी सुनाऊंगा।
2: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: शुक्रिया,
2: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके ड्यूरिंग 92.4 FM में।
0: नमस्ते,
1: जी, कैसी हैं सुरभि जी?
0: आप कैसे?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप क्या कर रही
0: हैं?
1: जी, आज कौन सा गाना सुनना है आपको? और गाना किसी को सुनवाना भी है? जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, बस सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 92.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड, सासामुसा, प्रभु मार्केट, मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट, हथुआ, थाना रोड, भोरे, थाना चौक, बरौली, स्टेशन रोड, सिद्धवलिया और थाना रोड, मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
9: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, सलाम अलैकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम।
11: रेशमा बोलते हैं पठानपट्टी से।
12: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 FM में।
11: कैसन बन जी?
12: हम ठीक बनी, रोवा बताई, रोवा कैसन बानी?
11: ठीक बनी हम।
12: अब का होता हुए है?
11: सीरियल देखा था नहीं।
12: अच्छा?
11: याद कर तो नहीं। और सब बतानी?
12: और सब तो ठीक
11: बा, सब ठीक बा।
12: हाँ,
11: तो भेटा नहीं थी।
12: अच्छा, आज तो भेटा गई नहीं?
11: आज तो भेटा गई। और सब कल बनी?
12: हाँ, नाश्ता पानी हो गई बा। तब बता दी आज कौन सा गाना सुने?
11: गाना सुने के बाद नसीब फिल्म के।
12: अच्छा, गाना के बोल?
11: गाना के बोल बा, हमको मिला नहीं जो नसीब में नहीं था, ये लग सुना दे।
12: अच्छा जी, चले ठीक बाबे।
11: बाल लोग से भोजपुरी में आजकल बात होता जी?
12: सब क्यों भोजपुरी के डिमांड करे तो का कर जाओ।
11: सुन रहे करनी है, बड़ा भोजपुरी से बात होता रहा से। सही बात बोलो तो भोजपुरी सही लागे ला। बोले थोड़ा सबके हिंदी बोलते बा, लेकिन जैसे अपन भाषा बतियाओ तो सही रहे।
12: तो गाना क्यों सुने को करे हम
11: गाना सुने हम नर्मा मैम सुने रानी बाड़ी करिश्मा बाड़ी हरि के नाम रखता मुस्लान बड़न नेशार बड़न पप्पू बड़न और सब कोई जितना लोग हमारा चिन्ह था सब कोई सुनी सब कोई नाम याद नहीं थे उतना।
12: हाँ जी जी कोनो बात नहीं है सब हरिये बोल दे।
11: हाँ सब हरे बोल दे तन सब कोई हमारा गाना सुनी जे जे हमारा चिन्ह था जाना था
12: सुनने वाला। चलिए ठीक बताओ रेडियो रूम में कॉल करनी है बहुत बहुत।

0: हाँ सलाम वालेकुम मैम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: मैम हम जाकिर हुसैन बिहार गोपाल जादवपुर से।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: सब ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है
0: जी मैम। आज हम भी सोचिए रहे थे कि और कॉल लगाएंगे तो कॉल लगाएंगे, कॉल लगाते लगाते कभी भी थक जाते हैं ना। हाँ तो इसीलिए कॉल लगाइएगा मानेंगे। तो 11 बजे 1 मिनट लगा रहे हैं।
1: अच्छा तो अभी तो लगातार कॉल आए जा रहे हैं, आप जिसका आ जाए।
0: कोई टाइम नहीं देंगे।
1: हाँ
0: जी मैम, जाना सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
0: जी मैम, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया।
1: जी और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: जी मैम, हमारे दोस्त लोग हैं सूफी आलम, मेरा आलम और इतनेश शर्मा और गोविंदा शर्मा, संदीप सुशील और रेडियो जितने परिवार है वो। और
1: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ओके मैम,
1: रेडियो रिंग में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527888291 या 95238

0: के बीच 80 29 94 921 पे
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
4: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
0: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
5: Now pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up,
6: hello.
5: Pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up,
6: hello.
7: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, हेलो मैडम
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
10: मैडम मैं वो गाना सुना है, सलाम को मैडम।
9: वालेकुम अस्सलाम, आप अपना नाम बता दीजिएगा।
10: ठीक है, शमशेर
9: जी। शमशेर जी कहाँ से हैं आप?
10: पानीपत से।
9: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
10: मैडम मेरे को उसने भी गाना नहीं सुना था जितना मैं अपना गाना सुन सकता। शीशे का दिल मेरा पत्थर का जवान चीर टूट गया,
9: यही गाना सुनना है।
10: ठीक है,
9: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
10: हाँ, सबसे पहले आपको, उसके बाद मेरी मम्मी को, उसके बाद मेरे भाई को, जितने तमाम सुनने वाले उन सबको।
9: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
10: मैडम मैं गाना कब सुनाऊंगी?
9: ये आपको गाना कल शाम को 5 से 7 के बीच में सुनने को मिलेगा।
10: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम में।
0: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी। नमस्ते
0: जी।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: मेरा बताइए, आप सुनाई क्या हाल चल रहा है?
1: हमारे तो ठीक बार रोबा बताए। खाना पीना हो गए?
0: खाना पीना हो गए मैडम। तब कैसन बनी मैडम आप?
1: बस एक पानी।
0: और सब बताए, खाना वाना हो गए?
1: हाँ खाना हो गए।
0: आज भी कौन सिंह के छत के गाना सुनूंगी?
1: कौन सिंह के छत के?
0: छत के हाँ।
1: गाना के बोल भी बताए।
0: जोड़े जोड़े फालावा जो कैसे ना कौन सिंह गावे हम।
1: हाँ हाँ
0: वही
1: गाना के ऊपर सुनेबो करे।
0: आती लोग सुनवाए घर में मम्मी पापा के बस।
1: गाना प्ले करता नहीं रेडियो रंजन में कॉल करे खाती। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070 32042 पे।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
4: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
16: जी रोजी भाई, प्रणाम बा, कैसे मानी?
15: जी जी हम ठीक बानी, रहो बताई रानी जी कैसे मानी?
16: राधे राधे।
15: राधे राधे।
16: और बताई नाश्ता वास्ता हो गई बा?
15: हाँ नाश्ता हो गई बा।
16: चलिए अच्छी बात बा, नाश्ता कर ले ले वानी का। और बापरे बापरे, हमने की कहे नहीं तो ना गावे नी, और दिन बड़ा गावत रहा मन तो कवे जो सामने रहती तो खूब जागरा
15: करती। ना ना कबो कबो मन करला गाना अच्छा लगे,
16: काय मन करे करेला काय मन करेला हम कही तो काय ना गई बेटाई ना काय ना गई हमने के मन ना करेला रो मुँह से गाना सुने के हमने के बेखादी बदी के गावे हमके तो काफी गुस्सा हो गया बाकी गुस्सा आते हुए बड़ा अच्छा लगे हम कहीं रही तो बड़ा हंसत रहेंगे चला आज तो कसर पूरा कही नहीं ना और काफी अच्छा अंजाद में गाना गई अब तो गाना काफी प्यारा रुवे भजूरी जय चंदा ले अब खबरिया बाप रे धीरे धीरे गावत रहेंगे हम कितना कही नहीं कितना दिन से कही नहीं गीत गाई रहूगा बाकी अच्छा लगे पूरा सपोर्ट बा हमारा तरफ से रहुआ कटी और सच में दी जब से रहुआ लो दोनों आदमी आये वानी लो पूरा माहौल के बदल दे वानी लो और सच में एक बात और हम बताओ चाहते नहीं और हम हर चैनल पर पकड़ा आ जानी हंसी से और जो ना हमारे शब्द बा राधे राधे सब कोई पकड़ लेला क्या ही रानी है
17: आवाज राउर शब्द राउर हंसी जमबावे पहले ही पकड़ में आ जाला
16: जी और खुल के हाथ से हमारा गाड़ी आज हिट दे देता नहीं रहुआ की और एक बात और बताते नहीं और जो मैसेज पड़े के अंजाद बा काफी बड़ा झकास लगेला तो कहीं तो नीक लगेला रानी की तरफ से बहुत मस्त मैसेज पड़ेगी और जो ये नया फोन आई बन कम्बा कैसन टाइम पर मोबाइल हमारा हाथ से जला हम छटपटा के रह जानी और देखी वही रिकॉर्डिंग भेज के रुआ गाना हम छोटी सी अपन आवाज रिकॉर्ड करके भेजे ना चलते हटा दी दे तुरंत और तुरंत हाथ से फोन चला गए हमारे शंकर जी मैसेज के लिए रही चंचली जी के लिए रही क्यों की जवाब हम ना दे पाए चली बात तो बड़ा झकास भाई तो आज गाना रवे ऊपर छोड़े भाई तो कौन कसर ना छोड़े सबरी रवे ऊपर आज
17: गाना फरमाइश हमने ऊपर
16: हाँ और ना तो कहा हमेशा हम अपने फरमाइश सुन ले बनी रहो लोग तो नहीं पता चली ना
17: ऐसा चले ठीक है
16: और ऐसे में तो गाना सिलेक्ट करे के और हमें नहीं लो स्टार्टिंग में गाना काफी अच्छा अच्छा होना
17: तो गाना जन सुने डेडिकेट करें
16: जी खास करके रहुआ के और मुरामना दीवानी और सोनू सर वानी और कुछ रेडियो दोस्त वानी दो तो हम सोनी जी के नाम सुना बाकी हुआ के और आरजे भास्कर जी वानी देवेंद्र जी वानी वर्दी जीवानी आजाद अंसारी जीवानी संदीप जीवानी और करिश्मा जीवानी रेशमा जीवानी और दोनों भाई बहन बानी लो और पप्पू जीवानी और बाकी जितना छूट गए लो रानी की तरफ से सबको ये से काफी ज्यादा बात कर ले बानी और सॉरी क्योंकि अगर नाम ना ले लो कि हमारे नाम तो काफी चर्च में चले ला तो सब लोग के और उमा शंकर जीवानी और ऐसे ऐसे बहुत चली प्ले करी और पानी पिए तो रानी तो ज्यादा बात करा के रहे
17: गाना प्ले करता नहीं
16: प्ले करी और छोड़ के तो दिल नहीं के करत बाकी छोड़ देते मजबूरी और खुल के आसे के बाद और दी और ये गाना तो सफरोज अली जी भी सुन ले
17: अच्छा जी चलिए ठीक हो
16: और चली और कोई मोबाइल मिली तो जरूर जीड़े ना मिली तो वही मुका मार के सुने मन मार के
17: जी रेडियो रंजन में कॉल के नहीं खाती बहुत बहुत धन्यवाद

0: नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: सुधीर कॉल बढ़ा हूँ, कोरिंगीवा जिला देवर झारखंड से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी ठीक हैं।
0: जी उधर गोपालगंज का मौसम का क्या हाल चाल है?
1: गोपालगंज का मौसम तो अभी काफी सुहाना बना हुआ है।
0: जी इधर भी थोड़ा मौसम धूप वाला है, लग रहा है जैसे बारिश होगी।
1: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है?
0: जी सुना दीजिए फिल्म धरती के पुकार के, लता मंगेशकर और मुकेश आवाज में। गीत के बोल है कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ये हजूर। जी इससे पहले मैं माको और रेडियो के जितने भी लिसनर हैं देश विदेशों में सबको सुनाना चाहता हूँ मैं।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।
2: जी हम

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4
14: में। मैम की भाती में
13: जी, मैं भारती बोल रही हूँ।
14: अरे मैम, कब से फोन कर रहे हैं, बिजी बिजी बिजी बता रहा
13: हूँ। जी जी, तो कॉल आएंगे तो बिजी तो बताएगा।
14: बोलिए, खाना हो गया?
13: जी जी, मेरा खाना हो गया। वैसे आपका नाम बता दीजिएगा।
14: मेरा अर्चना देवी।
13: और कहाँ से हैं आप?
14: जी, संतुर से।
13: अच्छा जी, आप पहली बार जुड़ रही हैं या दूसरी बार?
14: दूसरी बार जोड़ रहे हैं, एक बार सोनी मैम से बात हुआ था।
13: अच्छा जी,
14: हमको गाना सुनना है,
13: बता देते कौन सा।
14: ओ, मैया का गाना जो चंदा चंदा वाला नहीं है, चंदा उसने के लिए पर्ची,
13: कौन सा
14: पवन सिंह का गाना है।
13: पवन सिंह का नया है या पुराना?
14: पुराना है।
13: गाने की कुछ लाइन याद है?
14: नहीं, यही चंदा का टाला भौजी यही सही है गाना। ठीक है, मैं यही सुना
13: बोल रही हूँ। गाना किसी को सुनवाना है?
14: सब को सुनेगा।
13: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो
14: कंट्रोल। आज बज जाएगा? मैं
13: कल बजेगा?
14: आज नहीं बजेगा। ठीक है, मैं नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू सुल्तानगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, सुन रहे हैं रेडियो।
0: जी तो अभी कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: जी पिक्चर का नाम है सिर्फ तुम।
0: और गाने की बोल?
1: गाने की बोले पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझना है क्या करूँ।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गजराज जितेंद्र धाकड़ और अमर सिंह गिल, इन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
1: धन्यवाद मैडम।

0: कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से दोपहर 2 तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 9.4।
8: जी नमस्कार, क्या हाल चाल है जी?
7: नमस्कार, मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
8: हम भी बढ़िया है, और सब कैसे हैं? कल तो बारिश करवा दिया गोपालगंज में, मौसम अच्छा सुहाना हो गया है।
7: जी जी,
8: बताइए, हम लोग गर्मी से परेशान है महाराज।
7: नहीं, इधर थोड़ा सा भी ज्यादा गर्मी पड़ता है तो बारिश हो ही जाता है।
8: बताइए, दिल्ली है पहाड़ी इलाका, गर्मी पड़ रहा है गोपालगंज में, बारिश हो रहा है, ये तो अन्याय कर रहे हैं। हम लोग के साथ ऊपर वाला।
7: पॉल्यूशन ज्यादा है, क्या ही
8: खींचेगा। कम से कम पॉल्यूशन जहाँ पे ज्यादा होता है तो वहाँ पे ना रखना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन खत्म हो जाए और आदमी अच्छे अच्छे स्वच्छ और साफ वातावरण में रहे। अब बताइए जहाँ पे खुला एरिया है वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी हो रही है तो बारिश हो रही है, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं।
7: कोई नहीं, आपके यहाँ पे होगा।
8: आंसर कीजिएगा तब ना होगा जी। राम सर कहाँ कर रहे हैं आप लोग? ये होगल बाकी भैया के साली वाला कहाँ? वैसे ही मौसम महाराज बादल आके चेहरा दिखा के चला जा रहा है। और सब बताइए। तो काफी देर से हम लगा रहे हैं, कम से कम 160वां बार लगा है ये नंबर मेरा। और बताइए,
7: आज गाने की फरमाइश
8: है। आज हिंदी इतना कौवा कहते हैं नादान घुंघरू पायल की।
7: कौन सा?
8: कौवा कहते हैं नादान घुंघरू पायल की।
7: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
8: आप हैं, रानी मुखर्जी जी हैं, कबीर भाई हैं, सोनू भाई हैं, मामा भाई हैं, अखरी जी हैं, गाटा भाई, मुकेश भाई, उसके बाद भाई हैं रजत सिंह भाई हैं, उसके बाद जो है सरिता जी हैं, बबीता जी हैं, गुड़िया जी हैं, नेहा जी हैं, रोशनी जी हैं, और बाकी सबकी सहेली जितना है लोग उनको सुना दीजिएगा, सभी को सुना दीजिएगा। चलिए ठीक है।

0: हेलो
1: नमस्ते। इसके
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: लिए भी धन्यवाद। मैं संजय कुमार शाह, ग्राम पोहरा मनसुनिया, पूर्वी चंपारण बिहार के।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मेरा हाल बहुत बढ़िया है, आप सुनिए, आप कैसी हैं? आप पूरे रेडियो रिमझिम का फोन कर रहा कैसे हैं?
0: हमारे अच्छे हैं।
1: जी, आज मौसम का हाल बताइए, उधर के मौसम कैसे रहता है, बारिश होता है कि नहीं अभी?
0: जी, बारिश हुआ था और इस समय काफी सुहाना मौसम बना हुआ है।
1: जी जी, इधर भी यही है, अभी धूप को भी छांव चल रही है।
0: हाँ हाँ, तो कौन सा गाना सुनना है आज?
1: आज गाना सुना दीजिए, कितनी दिनों की बात मिले हो जरा मुझे बताओ सनम।
0: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: और दोस्त में हो गया सबसे तो पहले आपको रेडियो इंजन संपन्न परिवार को, और दोस्त में हो गया से खाना से मोहम्मद सादी जी, तो मैं सुष्मा कुमार जी, राम रास्ते सब कुशवा जी, कृष्ण बगान से राजेंद्र कुमार, कला बलपुर से नरेश सोहनी, दीपक दास, उदय बहन ठाकरे, झिन्ना साहब, धर्मेंद्र दैया, दिलीप मिथुन, धनराज प्रसाद कुशवाहा, राम भगन, राम भाई जी, भैरू बंशे, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्त को विशेष रचना दीजिए, मोहम्मद सलाय अंसारी मझवलिया को, रामचंद्र कुमार मुखिया, शंकर प्रसाद शंभू लगाए, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्त को, विशेष करके रेडियो इंजन से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार को सुनाते हुए अभी आप फिर करेंगे। नमस्ते
0: जी। नमस्ते, रेडियो रमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष

0: द्वारा
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: Now pick your phone up.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
6: जी प्रणाम।
5: प्रणाम,
6: कैसे हैं?
5: हम तो ठीक बने, रोगा बताए रोगा कैसे बने?
6: हमारे बाप भारती से होता ना। अरे हमारे बाप तो भारती जी से होता ना।
5: हाँ
6: आवाज ये एक जैसा रोका जाता ना।
5: अच्छा,
6: उनका धीमा बार और थोड़ा तेज बार, इतना ही बहुत ना तो मिलता जुलता था।
5: तब और सब बताए, हाल चाल सुनाई?
6: ठीक बा, बहुत परेशान बने, कम से कम 300-350 बार कौन कोई।
5: अरे बाप रे बाप, लागत लाइन बहुत ज्यादा
6: 350। अब कहने की अब लास्ट करो तो नहीं, अब एक बार देखे 12:30 बजे तक चलो। फरमाइश का दिया ध्यान में नहीं किया वो।
5: काहे दे रहे हो फरमाइश ध्यान में नहीं किया?
6: हमारे कुछ अलग डिमांड रहा है।
5: तो गाना भुला गई नहीं का?
6: ना हमारे कुछ अलग डिमांड सोच ले रही ना।
5: तो बताई,
6: हम सोच ले बनी की आज रोहड़े से सुनी रोहड़े चॉइस से, वो ऐसे ना बताए की कौन गाना सुना है। ये तो आई डिमांड भाई पूछे के भाई, सब लोग कहेंगे तो कहते करेला कि अपना पसंद सुना दे, बाकी आज रौरा पसंद से या रौरा मुंह से सुने के चाहते नहीं की भाई गाना।
5: गाने से बोल तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है।
6: हमारा सुना ना, और जितना लोग सुने सब लोग सुन ली।
5: बिल्कुल,
6: मनोज कुमार मिश्रा दिल्ली से।
5: चले फिर एक बार तब और गाना प्ले कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: दोनों गोल से नमस्ते।
0: जी जी आपको प्रिपेयर चुके प्रणाम। भाई बता चले लानो क्यों क्यों के पैर छू सकता।
1: गोपालगंज का मौसम कैसा हुआ?
0: जी जी गोपालगंज के मौसम बढ़िया बा।
1: धूप निकल बा?
0: हाँ एकदम हल्का धूप निकल बा।
1: भी हल्के धूप निकल बा। कल थोड़ा लेट से जुड़े ने थोड़ा काम ज्यादा रह गए वही से।
0: चले
1: काम 3 बजे जुड़े में। और सब बताए?
0: और सब ठीक पावे।
1: खाना खा के हिलवानी की ना?
0: हाँ हाँ खाना खा के हिलवानी।
1: ऐसे आवाज बहुत सुनो ना।
0: ऐसा कोनो बात नहीं। कौन सा गाना का फरमाइश है?
1: गाना का फरमाइश बजा दी चंदन चंचल के बारे में बजा दी।
0: गाना के
1: सीखली सब ले रानी।
0: और गाना के सुना होंगे
1: सबसे पहले रजा के सुनाए के बाद।
0: अच्छा।
1: और मनोरमा दीदी के और रानी जी के सुनाए के बाद। करिश्मा जी के, राघव जी के, उत्तम सोनी के और रेशमा जी के और सोनू सर के, पंकज सर के, अफसर सर के, सोनी दीदी के, दिव्या दीदी के और स्पेशल में डायरेक्टर सर के।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,
7: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4
14: दीदी पर नाम
13: भारती दीदी है क्या रहुआ आवाज में की पहचाना
14: ना बाबा दरुना के पहचाना
13: ना ऐसा कोनो बात नहीं है
14: ऐसा बात भल ही बाबे
13: ना सब बढ़िया बा रहुआ बताए रहुआ कैसन बानी
14: हम ठीक बनी खाना ना हो गल बा
13: हम
14: निर्मा दीदी कहाँ बनी तो गाना सुने गुआ हमारा एगो
13: बिल्कुल बता दी कौन सा
14: नीलकमल सिंह के बजा दी कौन
13: और गाना क्यों के सुनवा जो करे
14: सबसे पहले रहुआ के और मनोरमा दीदी के सोने दीदी के और अफसर सर के और सोनू सर के गणेश सिंहान और रानी दीदी और उत्तम सोनी और राघव जी रेशमा जी काजल जी और हम हमारे बिटू भैया और हम माई पापा सबके सुन ला जो छूटल बस सबके सब हरे कहा देता
13: जी तो गाना प्ले कर जानी सुनत रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM
14: थैंक यू।

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिन 90.4 FM में।
1: क्या हाल है मैम?
0: जी मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम तो अच्छे हैं। धरती मैम बोल रही हैं ना?
0: जी
1: मैं अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 है।
0: जी जी
1: दिनों बाद में याद किए हैं, लगता नहीं है जल्दी कॉल, इतना ट्रैफिक जाम रहता है आपकी गाने की गाड़ी के पटरी पे, पूछिए मत।
0: कभी कभी हो जाता है,
1: बहुत कभी कभी नहीं, हमेशा।
0: जी जी
1: बहुत मुश्किल से कॉल लगता है। आज हमको सॉन्ग सुनना है,
0: बता दीजिए।
1: सॉन्ग सुनना है हमको, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: हाँ हाँ, सबसे पहले तो आप दोनों लोग को, आपको और मोनर्मा मैम को,
0: जी,
1: और अख्तरी को, राघव जी को, कमरान भाई को और दिलीप भाई को, आज जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को है।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
1: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। आज बज जाएगा क्या?
0: कल बजेगा।
1: ठीक है, ओके, शुक्रिया मैम गाना बजाने के लिए।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493945651 या 9797-06-575।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे समय 9:22 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सबको एक छोटा सा मैसेज करना है जिसका नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें आप तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें। ये बातें हर रोज़ आप सभी के बीच बताई जाती है कार्यक्रम शुरू करते वक्त और बीच में भी, तो आप ऐसा ना करें कि गाने की फरमाइश नहीं करें। यदि नए गाने की फरमाइश करेंगे तो आपकी फरमाइश पूरी ना हो पाएगी और आप अच्छे गाने की फरमाइश करें। एक सुरतागढ़ कल थे जो हमारे पास मैसेज किए हुए थे और उनके तरफ से गाने की फरमाइश ऐसी पहुंची थी जिसको चेंज करना पड़ा, तब डायरेक्ट गाने की फरमाइश वैसे करें जो चेंज ना करना पड़े, डायरेक्ट आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो आप फरमाना चाहते हैं तो फरमा सकते हैं। अभी कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है, यदि जितने जल्दी आप फरमाइश हमारे पास भेजेंगे उतनी जल्दी आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा। मेरा पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैंने तुझको चाहा ये मेरी मेहरबानी। सुरेश जी त्रिबिरवा से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्कार गाना आ लौट के आजा मेरे मित, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। नाम सगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर शाम से डेडिकेट दिलीप राम जी को और कमरान को, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। थोड़ा सा सब्र करें और आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए पहले गाने के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं। सुरेश जी की फरमाइश सुनते हैं हम सब रेडियो रमझिम 94.4 FM पर।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो एम जी 94 FM पे सुन रहे थे। और यदि आप भी इस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, इस तरह के गाने पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप फरमाएं और आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। और यहाँ पे कुछ मैसेज और भी पहुँचे हुए, तो मैसेज दिखते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि अर्ज किया है जो मेरा ना था वो मेरा हो ना पाया, अर्ज किया है जो मेरा ना था वो मेरा हो ना पाया, आँखों में आंसू थे मगर मैं रो ना पाया, एक रोज़ उसने कहा हम ख्वाबों में मिलेंगे, और मेरी किस्मत तो देखो उस रात में सो ना पाया। सुनो भाई नमस्कार, और कैसे हैं आप सब, मस्त है ना? बिल्कुल मस्त, आप सबके बीच उपस्थित हूँ और आप लोगों का साथ रहेगा तो कार्यक्रम भी मस्त और गाने की फरमाइश भी मस्त आएगी, तो मिजाज भी मस्त रहेगा। और कहते हैं कि आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, रोहित देहरादून से गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। अगली मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, कैसे हैं, नाइस प्रोग्राम, मैं भी जुड़ गई हूँ निशु फ्रॉम झिरवान से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू बाबू हम भी जुड़ गए हैं और मैडम भी जुड़ी हैं, और इन्हें एक मेरे माध्यम से गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत करते हैं आप दोनों का, बन रहे हमारे साथ। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश। यहाँ पे पहुँचा हुआ है सगीर अंसारी जी के तरफ से, गाने का बोल देते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजैक पर।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम झीम 94.4 FM पे और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज करें यानी कहाँ से रेडियो सुन रहे हैं उस जगह का नाम बताना है। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पर आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो हम शामिल करते हैं। और मेरा नंबर 72 77 16 65 96 शो का, तो आप ज़रूर मैसेज करें यदि आप गाने पुराने पसंद करते हैं। तो पहला मैसेज अभी का पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि धन्यवाद सर, चलिए आप सॉरी लिखा गया है कि धन्यवाद, चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है रोहित जी के तरफ से और गाने का बोल दिया गया है बावला हूँ मैं बावला। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सब रेडियो रमझम 94.4 FM पे।

कमल के शाम रेडियो 4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया जी आपका गाना प्ले करने के लिए, और कहते हैं थैंक यू। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमजेम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मधुसरिया से, राजू कुमार कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है, तो आज तो नहीं सुनाएंगे, कल ही आपकी सॉन्ग की फरमाइश पूरी किए थे। और सप्ताह में एक ही बार मौका मिलता है, अगर जगह खाली बनेगा तो हम आपको बताएंगे कि आप गाने की फरमाइश करें। और यदि आप मैसेज पहुँचाए हुए हैं जगह बनता है तो आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश रहेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि आपके गाने प्ले होंगे ही होंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचाने वाले वीरेंद्र गुप्ता भैया एंड लवली गुप्ता, और इन दोनों के तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है फिल्म उपहार से स्वर लाता जी की सॉन्ग है तुम ही रे नगरिया तुम ही रे समरिया, डेडकेट रोशनी शफाक हीना हजरा शुलोनी आशा निशा शाहजहाँ शाबा निशा गुड़िया मनीषा ब्यूटी नीतू और हमारे साथ आपको और दिलीप भाई को और हमारे जानने पहचानने वाले सभी श्रोताओं को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे एक और भी मैसेज पहुँचाए हुए कहते हैं कि क्या बात है सभी शहरों के साथ और सभी वालियों के साथ, आगे की मैसेज समझ नहीं आ रही, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं आपकी और सुनते हैं हम सब रेडियो 4 FM पे।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3092 या 97565-7750।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम छी 94.4 FM पे सोशल एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, शुक्रिया सोनू बाबू सॉन्ग प्ले करने के लिए। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एम छी सुनने के लिए और आपके साथी को भी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि तेरी है ना मेरी है, तेरी है ना मेरी है, वक्त का हेरा फेरी है। रीता गुप्ता त्रिवरवा से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाम विनोद कुशवाहा, पता हनुमान क्रिक, मुझे गाना सुनना है नाना पाटेकर की याद में पीले पीले। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो प्रणाम सलाम सर जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे और लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उजवलिया उचका गांव प्रखंड से, और सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है राजा मोबी से नजरे मिली धड़कन ने कहा। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और ऑप्शन में भी सॉन्ग है, दूसरा अब कैसा घबराना है, अब कैसा बिल्कुल नहीं घबराना है, लेकिन गाने तो एक ही प्ले होंगे, ऑप्शन में दी गई है। और कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। डेडिकेट करती हूँ आपको एंड सोनी मैम, श्रुति मैम, दिव्या मैम, भारती मैम, मनोरमा मैम, निशा सिंह एंड निशा पांडे, सुधा सिस्टर बतरदे वाली और शिल्पी सिस्टर, रोशनी सिस्टर, साइदा अंसारी एंड प्यारे प्यारे ऑल लिस्नर को। इसलिए ऑल लिस्नर के साथ एंजॉय किया जाए। रेडियो रमझिम 90.4 FM पे आपके गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं।

टुडे एमसीएम 9.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यदि आप भी सुनना चाहते हैं और अब तो समय की समाप्ति होने वाली और बहुत कम समय मेरे पास बचे हुए हैं, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोना भाई नमस्कार, और शुरुआती सॉन्ग से लेकर शगीर जी, वीरेंद्र गुप्ता भैया और सॉन्ग सुपर सुपर, बिल्कुल आज प्यारे प्यारे गाने की फरमाइश पहुंचे हुए थे। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी दिल्ली से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सो मच, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है नाना पाटकर जी की रील वाली सॉन्ग, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे संदेश भी दिए हुए हैं कि नाना पाटकर की आज श्रद्धांजलि मना रहे हैं सभी भारतीय और रिमझिम में जितने भी सभी को गाना सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल सुनाइए और चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

कमाल के शाम रेडियो रेम छेम 94.4 FM पे सुन रहे थे। अभी हम सभी और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मिसेज पहुँचा हुआ है सुपर सॉन्ग वेरी नाइस मिसेज करती है निशा भारती, और आगे मिसेज पहुँचा हुआ है गाना बजाने के लिए धन्यवाद। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेम छेम सुनने के लिए, और आगे मिसेज पहुँचा हुआ है अगली गाने का फरमाइश प्ले करते हैं, और इसी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करेंगे। यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, आई एम तृप्ति फ्रॉम नवादा गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है क्यों ना बोले मुझसे मोहन कैसे मनाऊं, सुनवाना चाहती हूँ अपने सिस्टर एंड आपको। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और साथ ही इस कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं, क्योंकि समय जो है हो गए हैं और गाने प्ले करने के बाद से फिर से मौका नहीं मिलेगा। हर तो मौका दिया जाता है एक अंतिम गाने प्ले करने की, लेकिन आज इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। आगे एक और मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि निशा जी की सुपर सॉन्ग और पीले पीले ओ मेरी जानी सुपर सॉन्ग। दिलीप जी मैसेज करते हैं बिल्कुल सुपर सॉन्ग रहे दोनों, और अंतिम गाने भी इंजॉय किया जाए, और साथ ही साथ हमें दीजिए जाने की इजाज़त। आप सब सुनते रहें रेडियो रेम छेम 94.4 FM जो हमें सस कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: ऑलराइट।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम, नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैनपट्टी गोपालगंज।
6: तू जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जब तक हमारे लिसनर हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और गाने की बोल है इधर चला मैं उधर चला और मूवी है कोई मिल गया। तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी आप सभी सुन रहे थे मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल थी इधर चला मैं उधर चला। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, और क्या हाल है मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, और मुना कुमार मैसेज करने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम जी, मैं प्रदीप सहानी दिल्ली से और सॉन्ग सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख

लिख रहे हैं बिजेंद्र शर्मा, मोहम्मदपुर नीलामी से जुड़े हुए हैं और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, साहुल भारद्वाज जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि न दिया चाहिए न चिराग चाहिए, बस तेरी मुस्कान की रोशनी चाहिए, तू रहे सामने मेरे हर पल, बस इतनी सी खुदा से जिंदगी चाहिए। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, सभी दर्शकों को सुनवा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी आप कैसी हैं, गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय दी गुड आफ्टरनून, मेरे तरफ से सब लोगों को बोल दीजिएगा और आन बान शान मेरा नाम आप बताइए। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय नमस्ते मैम, नाइस सॉन्ग, रंजीत कुमार तिवारी जलंधर पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, बहुत लेट आए भारती मैम, आपका इंतज़ार करते करते बहुत बुढ़ा हो गया हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा हेलो माई चॉइस का रिकॉर्डिंग में लगे हुए थे आज, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे, आज मेरी भी एक फरमाइश है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है हमारे पास, लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भारती जी, मैं निज़ामुद्दीन सऊदी अरब से और मेरे गाने की फरमाइश है, आज एक सप्ताह हो गया है, प्लीज़ मेरे गाने को आज जल्द से जल्द बजा दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो जी चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और गाने की बोल है, ये माना मेरी जान मोहब्बत, और काफ़ी बढ़िया गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493456151 या 9707065।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है। जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, हम शिव शंकर टेलर पटना बिहार से जुड़े गए हैं और हमारे भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और हम भी सोनू सर का शो में गीत का आनंद ले रहे थे। सभी रेडियो दोस्त को हमारा तरफ से नमस्ते बोलिएगा, और हम रेडियो के माध्यम से नाना पाटेकर साहब जी को सत सत नमन करते हैं, और उनका कल देहांत हो गया था मैम जी, उनको आत्मा को भगवान शांति दे। तो जी बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रही है कि सलाम अलैकुम, हम भी शो से जुड़ गए हैं, फरीदा खातून बंद्रा से, और हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रही हैं कि आपकी कमी से मेरा दिल उदास है, पर मुझे तो आपसे मिलने की आस है, जख्म नहीं फिर भी दर्द का एहसास है, ऐसा लगता है जैसे दिल का एक टुकड़ा आपके पास है, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रेशमा पठानकोट से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना सुनना चाहती हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम गोड़ छूके भारती जी, हमहूँ आगिल बानी, हमरो हाजिरी लगा दी, हम कुनवा मोड़ घर से जुड़ल बानी। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपकी भी हाजिरी लग गई है, और यहाँ इसी के साथ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। लिख रहे हैं नमस्ते मैम जी, मैं प्रदीप सहानी दिल्ली से, और गाना सुनना चाहता हूँ, और गाने की बोल है दिले ये नादान। लता मंगेशकर की आवाज में गाना है, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे ए दिले ए नादान लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं प्रदीप सहानी जी की थैंक सॉन्ग सुनाने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि साबिर अंसारी जी की तरफ से यहाँ लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो जी बिल्कुल आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती दी, और आप कैसी हैं बताइए ज़रूर। मेरा नाम रानी कुमारी है, घर हरखुआ, और मेरे तरफ से रेडियो दोस्त के नमस्ते बोलिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आप कैसी हैं रानी जी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, ब्रेकअप के बाद वो बोली तेरे जैसे 36 आएंगे और 36 जाएंगे, मैंने भी कह दिया भगवान तेरा। धंधा बढ़ाए, और काफी मजेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, सो से मैं भी जुड़ गया हूँ गोविंद कुमार जलंधर पंजाब से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैडम जी। तो जी बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की बोल है

लिख रहे हैं बिरेंदर शर्मा, मोहम्मदपुर नीलामी से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। नजरें मिला के यूं हमसे मिलना, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:21 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और लिख रहे हैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ और हमारा नाम मोहम्मद सरफराज है और गाना है गाने की फरमाइश किए हुए हैं और गाने की बोल है ओ लाल दुपट्टे वाली और काफ़ी बढ़िया गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बताओ, और काफी बेहद खूबसूरत गाना था। और मैसेज करने वाले थे मोहम्मद सरफराजी, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय, और सुहेल भारद्वाज जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं गणेश जी की मेरा गाना बजेगा कि नहीं ज़रूर बताइए। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करूँगी, पर अभी नहीं, एक दो गाने के बाद। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं लिख रहे हैं कि हाय हेलो गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल है? और मोश और मनीष पांडे सिवान से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। और लिंक के माध्यम से पहुंची हुई है, और गाने की बोल है तेरा गम मेरा गम एक जैसिया सनम, और काफी बहुत खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

रुकिए,

0: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने? मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में

0: आने दीजिए।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है मनीष पांडे जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू शुक्रिया जी गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर गीत बज रहा था भारती मैम सुनवाने के लिए, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरा दिल तेरा दिल वाला गाना बहुत सुंदर था। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार और सभी के बीच जुड़ गया हूँ दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं मेरे तरफ से दिलीप राम आज़ाद अंसारी बिरजू देवेंद्र उत्तम सोनी और सभी श्रोता को सलाम कहिएगा। और लिख रहे हैं नाम है सागर आलम फ्रॉम तेजपुर आसाम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती जी कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से। और लिख रहे हैं कि कौन कहता है हमें आपकी याद नहीं आती, आपको ना सोचे ऐसी कोई रात नहीं आती, वक्त गुजर जाता है पर आदतें नहीं जाती, आप खास हो ये बात सबसे बताई नहीं जाती। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि एक और मज़ेदार जोक, और लिख रहे हैं पप्पू दुकान पर गया और बोला भाई साहब एक अच्छा सा मॉस्किटो लिक्विड वेपोराइज दे दो, और दुकानदार ने लिक्विड दिया और बोला ये बहुत पावरफुल है मच्छर इसे देखते ही भाग जाएंगे। पप्पू अचंभे में बोला अरे तो मच्छर इसे देखते कैसे देखेंगे कैसे, क्या इसे इसमें चश्मा भी साथ आता है। और काफ़ी मजेदार लाइन पहुंचा हुआ है श्याम चौधरी जो कि मलेशिया से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़े हुए हैं और गाने की बोल है पराई बेटी। तो चलिए बिना देरी की आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना गणेश जी की तरफ से, पराई बेटी। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू तो ये गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है करिश्मा जी की तरफ से जो कि लिख रही हैं सुपर सॉन्ग बोल देम दीदी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं ऑसम सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं नीरज सिंह। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हरे कृष्ण नमस्कार मैम, गुड्डू कुमार लाइन बाजार से, और मैं अभी सऊदी अरब से जुड़ा हूँ और इस कार्यक्रम में मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और मैं यह कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश और क्या है इनकी वॉइस।
1: ओ नमस्ते, प्रणाम, आदा और राधे राधे दी। और कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगी, और मैं भी ठीक हूँ। और बड़े दिनों के बाद आपकी शो में हम भी जुड़ गए हैं, और आवाज के क्या बताऊं, आवाज थोड़ी सी मेरी गला फंस गई है। और दी, और एक बात भी है और शिकायत भी है और गाना भी सुनना है और सब कुछ करना है आज इसी में। और सबसे पहले मेरे तरफ से डायरेक्टर सर के नमस्ते, और उनसे शिकायत यही है। और शो के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं तो जब तक आरजे सिमरन दी थी तब से अभी तक ले हम लोग सुनते आ रहे हैं लोग, और काफी शो जितने हम तारीफ करें उतने शो के बारे में कम पड़ जाएगा। और खास करके तो जब डायरेक्टर सर संडे के दिन आते हैं तो काफी बात अपन विचार बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं। और सबसे बड़ी बात हम बता दूं, और आरजे सिमरन थी तब से हम लोग सुनते आज के डेट तक ले भी आ रहे हैं लोग। और मेरा नाम है रानी कुमारी, मेरा घर है अरखुआ, और मैं इसलिए डायरेक्टर सर से एक बात मैंने, और सबसे पहले डायरेक्टर सर की नमस्ते भी है, और ये बात मेरे जरूर डायरेक्टर सर तक पहुंचाइएगा दी। और अगर हेलो माय चॉइस अगर सुनते होंगे तब भी उसमें भी तो कितना बात हम लोग बोलते हैं ना, जरूरी है कि उसमें अगर लिख कर भेजे लो तभी वो हम लोग की भी बात सुनेंगे। अगर हो सके तो ये बात जरूर डायरेक्टर सर तक पहुँचाइएगा, और मेरी पूरा फैमिली की तरफ से उनको नमस्ते है। और मेरे नाम तो अब वो जानती है तो बात जरूर पहुंचाइएगा। और डायरेक्टर सर से बाकी शो के बारे में तो कोई शिकायत नहीं है, सारी शो एक से एक बढ़कर है। और मैं एक शिकायत इस बात की करना चाहती हूँ कि जब छठ आ रही है, नवरात्रि आ रही है, तो हर लिसनर के फर्ज बनता है, इसको तो काफी पॉपुलर है तो गाना तो बज सकता है ना, और आप लोग के अपनी मर्जी से नहीं बजाना है तो डायरेक्टर सर से इजाजत तो ले सकती है ना। अगर ये बात हो सके तो डायरेक्टर सर तक जरूर पहुंचाइएगा दी। और बड़ी दिनों के बाद और काफी लंबी रिकॉर्डिंग हुई है तो आज हमको फिर से एक भोजपुरी सॉन्ग सुना दी, और भोजपुरी हिंदी तो बोलिए देनी अंत में, और पतावा दी आज भोजपुरी सॉन्ग खेसारी जी की आवाज में सुना दी रहुआ। और गाना के बोलवा हाय रे डिली बिस्टिक लगा के सजती हो माँ कसम कमाल लगती हो, और ये सारी बात तो जरूर कोशिश करें डायरेक्टर सर तक पहुँचावे के। और हम शो के बारे में हम जितने कहीं उतने तारीफ करी, बहुत शो के बारे में कम पड़ जाई, बाकी ये थोड़ी सी शिकायत तो जरूर बा भाई, जब ये शो इतना पॉपुलर बा, छठ आवता, दिवाली आवता, दशहरा आवता, तो इनमें तो गाना तो बनता अनुभक्त या चाहे कोनो गाना सुने के, तो कोशिश करें ये सब बात थोड़ा डायरेक्टर सर तक पहुँचावे के। और ये गाना में सब कोई सवारे बा और रानी के तरफ से, और गाला काफी हमारा डाउन बा, और एक बार सारी लोग की रानी के तरफ से भोजपुरी प्रणाम बा, और कोशिश करें दी इस सर तक बात पहुंचावे के। और हम आज बता दे अगर स्टार्टिंग से बात करिए मैं से कितना आरजे गईनी लो और सुने के, तो आरजे सिमरन के बाद आरजे नेहा आईनी, श्रुति दी आईनी, अलिया दी आईनी, सरोज आईनी, मेहक दी आईनी, और ये सब आरजे रह चुकल बानी लो, और दौर तो भारती ना, और एक पहले दिव्या दीरानी, बहुत आरजे आई नहीं लो, तो ये सब शो हमने के बहुत दिन से सुने नहीं, और काफी तो हमें चुकी से सुने नहीं भाई, शो के बारे में हम क्या बताएं। और वो लोग शो बहुत पॉपुलर होला, और कोशिश करें ये बात हमारे डायरेक्टर सर तक पहुँचाएंगे। और वाह ये गाना सब कोई किरानी की तरफ से सुनारे वाह, और गाला फंस गई वाह।
0: तो अभी काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइंस पहुंची हुई थी रानी जी की तरफ से, और जी आपकी बातों पे ध्यान दिया जाएगा और डायरेक्टर सर से भी बोला जाएगा, और वो खुद सुन भी रहे होंगे। और यहाँ पे चलिए बिना देरी किए आपके हम गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
4: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि रानी जी की तरफ से यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है फीडबैक मैसेज वॉइस के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: दी गाना बजाने का दी दिल से रवा के शुक्रिया और कब से मोबाइल छीन के रख ले बानी गोपाल गंज जाए वाला वारन भाई और गैस बुक करे के बाद और आजकल हर काम मोबाइल से होता शुक्रिया अगर वाला कोनो जवाब ना दी मोबाइल चल जाए।
0: और रानी जी आपका गला फंस रहा है सो आप सिरप ले लीजिए और थोड़ा ख्याल रखिए अपना और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं सागिर आलम जी जो कि लिख रहे हैं रानी की पसंद लाजवाब सागिर जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है तो चलिए जानते हैं इनकी क्या है फीडबैक मैसेज शिव शंकर टेलर जी की।
2: सुनवाने वाले रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे आवाज़ सुन रही हो तो उनको तहे दिल से शिव शंकर टेलर पटना बिहार के तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ।
0: और रानी जी के लिए यहाँ फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं करिश्मा जी की सुपर सॉन्ग बोल देना रानी बोल दीजिएगा रानी दीदी को प्लीज़ भारती दी। तो जी मैंने बोल दिया है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गणेश जी की सुपर सॉन्ग रानी जी बहुत अच्छा गाना और सुपर सॉन्ग रानी दीदी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती मैम। और मुझे भी गाना सुनना है लिख रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहा है कि हम सुबह से शाम तक रेडियो रिमझिम सुनते हैं और हाजिर लगा दीजिएगा मेरा भी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जी आपकी भी हाजिरी लग गई है। और राकेश भारती बक्सर से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है रेशमा जी की तरफ से और लिख रही हैं कि मुझे भी गाना सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुना दीजिएगा। और कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो चलिए आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूँगी पवन सिंह का धमाका सॉन्ग। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।

0: sorry.
1: तो अभी हम लोग सुन रहे थे धमाका सॉन्ग रिश्मा जी की तरफ से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम कैसी हैं, और सोनू चौरसिया कुवैत कतर सिवान से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं हमारी भी हाजिर लगा दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है राम कुमार पांडे जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना नहीं सुनाना है। तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। और जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। और इनकी तरफ से यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं गाने की बोल है चांदनी हंस के। तो चलिए आपके लिए इस गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM में ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:08 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है राम कुमार पांडे जी की तरफ से, जो कि वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फीडबैक मैसेज।
4: भारती मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है गाना सुनाने के लिए और उम्मीद है कि सबको अच्छा भी लगा होगा। और एक लाइन जो है रामायण की एक चौपाई है, मैं कहूँगा, अरे राम

0: तो भारती मैम, शादी से पहले मेरा दोस्त स्टेटस डाला करता था, कहता था, लिखता था, शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। अभी मैंने वीडियो कॉल किया उसको तो भाभी ने उठाया, मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो भाभी बोली शेर लहसुन छील रहा है। बताइए, शादी के बाद ऐसे ही हालत होती है। भारती मैम, आधी रात को बच्चे को रोना सुनकर पति ने पूछा, अरे मुन्ना क्यों रो रहा है, तो पत्नी बोली सो नहीं रहा है, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो पति बोला, अरे लोरी गाकर सुना दो, तो पत्नी बोली लोरी तो ही गा रही थी, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि बच्चे को ही रोने दो, तुम चुप हो जाओ, मतलब कि बेसुरी गा रही थी। भारती मैम, मैं कहूँगा कि व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा खुश रहना दिमाग का संतुलन बिगाड़ सकता है। आप बोलते हैं ना, जो दुखी है उसे ठेस मत पहुंचाओ, बल्कि उसे ठेके तक पहुंचाओ, ठेके तक। पति बोला, पता है विदेशों में तलाक लेना बहुत आसान है। तो पत्नी बोली, जानती हूँ, तभी तो वहाँ की लड़कियाँ शादी के समय रोती नहीं है, रोती नहीं है, और हमारे इंडिया में तो रोते जाती हैं, रोते जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सुनने के लिए, नमस्कार।
1: और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं राजकुमार भैया जी, नमस्कार, गाना सुपर से ऊपर चंद चांद बद्रा में छुप गए, दिलीप राम दिल्ली से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रानी कुमारी पिपरा सिवान से जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करेंगे, और गाने की बोल है गुलरी के फूल। तो गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ और हमारी मुलाकात आपसे होगी दोपहर न्यूज़ के बाद। और जिनके भी गाने को प्ले नहीं किया गया है और जिनके भी मैसेज को शामिल नहीं किया गया है दोपहर न्यूज़ के बाद फिर शामिल किया जाएगा। तब तक आप सभी इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में IIT जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रूपये से घटकर 8 रूपये से भी कम रह गई है।
4: भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टांग चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
5: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच, HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
6: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही हैं। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक की उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र, कर्नाटक और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया अनार कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए 90

0: 0664-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज़ के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं, कृष्णा जी की दोपहर न्यूज़ के बाद से फिर से हाजिरी लगा दीजिएगा और मुझको गीत सुनना है बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि क्या हाल है जी अजीत कुमार शाह उर्फ हिटलर बिहारी हरियाणा से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती जी, गुड आफ्टरनून, मैं भी लेट जुड़ा हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, न्यायपारा विरई से बसंत कुमार ठाकुर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हैं, और लिख रहे हैं कि बच्चा नल से आते पानी को देख कर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा, बेटा नदी से। बेटा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं और बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर माँ को कहता है, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है शमशाद जी की तरफ से, और यहाँ पे गाने की भी फरमाइश पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, इरशाद मास्टर रोशन टेलर ग्राम धनाव से जुड़ा हूँ और मुझे भी एक गाना सुनना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और सोनू कुमार छुटका साखे रामदास से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। अभी काठमांडू नेपाल से गाना सुन रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं, मन की समरिया बन गई ला तू, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफी बेहद खूबसूरत सा गाना उदित नारायण की आवाज में, मन की सांवरिया बन गई ला तू। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहा है कि धन्यवाद गाना बजाने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं सोनू कुमार जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम लोग भी आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरी आदरणीय ऑनलाइन खातावाचक महोदया, सादर प्रणाम बा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर हमने भी मैसेज कर दिया। और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से, किशोर सावलानिया, सावित्री सावलानिया, सुमन सावलानिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी, हम भी रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, धर्मेंद्र कुशवाहा देवरिया यूपी से, और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हेलो,
0: अच्छा जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: नाम मेरा रोड, और गाना की बोल है मैं क्या करूँ राम, मुझे मिल गया, फिल्म का नाम है संगम, पुराना है
0: जी जी
1: हिंदी, दो चार आदमी हम लोग आए सुनने वाले। गाना आप लोग पूरा नहीं बजाते हैं, आगे तक कर देते हैं
0: गाना। आपका गाना अगर पाँच मिनट से अधिक हो तो उसे काटना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लिसनर होते हैं जिसे सबको सुनना होगा।
1: बहुत से गाना देखते हैं कि थोड़ा बजा उसके बाद काट दिया गया, प्रचार एकदम नहीं करता है गाना, कट जाता है।
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गाना बजता है सबका, 3 मिनट से अधिक ही बजता है। और हमारे काफ़ी सारे लिसनर जुड़े होते हैं और जिन सबके गाने की फरमाइश को पूरा करना होता है, तो सबका ध्यान रखते हुए गाना 3 से 4 मिनट का बजाया जाता है।
1: तो बात सही है, कोई
0: जी जी, अब मान लीजिए 7 मिनट का गाना होगा तो मैं उसे पूरा तो नहीं बजाऊंगी ना। नहीं, बहुत सारे गाने भी हैं जो पुराने हैं, वो थोड़ा होते हैं अधिक। चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना बढ़िया है, 3 मिनट का है, बजा देंगे पूरा, सुन लीजिएगा। ओके, गाना प्ले कर रहे हैं रेडियो रिमझिम में, कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय बुढ़ा में

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
5: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
5: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड, सासामुसा, प्रभु मार्केट, मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट, हथुआ, थाना रोड, भोरे, थाना चौक, बरौली, स्टेशन रोड, सिद्धवलिया और थाना रोड, मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
5: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे

और यहाँ पे मैसेज पहुँचा जो कि लिखने के हाय मैम, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, और लिखने के मैं अनिल कुमार बनारस के रहने वाला हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर भोजपुरी की गीत बज रहा है मैम जी, और मैसेज करने वाले हैं सोनू कुमार जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं प्रीति कुशवाहा गोपालगंज से, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा दीदी कहाँ बानी जरूर बताएं। तो जी हम आगे बने रहो सबके बीच। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम नमस्ते, क्या हाल है जी मैम। तो जी मैं ठीक हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और एक बार फिर से आपकी हाजिरी लग गई है। लिख रहे हैं कि मैं संजय यादव दुबई से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और प्रीति जी की तरफ से फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए प्रीति जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के प्यारा सॉन्ग। और गाने के बोल है

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे कि गाने की बोल थी तो हर दिल हर की चार्जर कतहीं लगा ले लूँ। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया प्रीति जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए प्लीज़। और लिखने की मनोरमा मैम नमस्ते जी, तो नमस्ते, आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और मैसेज करने वाले हैं करिश्मा कुमारी जो कि पिपरा नारायण से जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, हम शिव शंकर टेलर जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर गीत बज रहा है, हम शिव शंकर टेलर पटना बिहार से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि सफीक अंसारी थाना भोरे ग्राम कोरिया गोपालगंज। और लिख रहे हैं कि ये वाला गीत सभी रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से मेरे तरफ से प्ले कर दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, मेरा भी गाना बजा दीजिए। और लिख रहे हैं कि गाने की बोल है, और प्लीज़ आप नाम मेंशन करिए, नाम मेंशन नहीं किया। और गाने के बोल है नखरे वाली लड़की, और जो कि लिख रहे हैं कि आई एम फ्रॉम जमुई बिहार से। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग।
1: शिमारू के नए वीडियोज़ के लिए

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर इस कार्यक्रम से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9857788291 पे जुड़ सकते हैं, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो 7277165696 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि मैं जावेद धनबाद से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे आदरणीय ऑनलाइन कथावाचक महोदय सादर प्रणाम बा, और लिख रहे हैं कि मुझे आप लोगों से शो में एंट्री नहीं करना था, लेकिन क्या ही करें रहा नहीं गया और मैसेज कर दिया। लिख रहे हैं कि मेरे आदरणीय ऑनलाइन कथावाचक महोदय सादर प्रणाम बा मनोरमा जी। तो जी हमारा तरफ से भी रहा के भी प्रणाम बा, और मैसेज करे अलावानी धनेश कुमार मिश्रा जी, तो बहुत बहुत स्वागत बा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि दिख रहे हैं कि हेलो मैम, और मैसेज करने वाली हैं जोया जी जो कि पानीपत के रहने वाली हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है एक बार फिर से। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारे मैसेज के साथ में रेडियो रिमझिम पर इतना भेदभाव होता है, क्या मैंने फरमाइश की थी उसके बाद भी सारी फरमाइश से पूरी किया जा रहा है और मेरी फरमाइश को नीचे दबा दिया रहा है। तो नहीं, ऐसे बात नहीं है, आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, इससे पहले फरमाइश पहुँची हुई है तो उन लोगों को प्ले करने के बाद आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मनोरमा दीदी, गोट छू के प्रणाम बात जी, तो बहुत बहुत स्वागत बा। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं धर्मेंद्र कुशवाहा देवरिया यूपी से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग ने मैं तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए धर्मेंद्र जी, आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की प्यारा।

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: सच होते।
1: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने की बोल थी, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं धर्मेंद्र कुशवाहा जी जो कि देवरिया के रहने वाले हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी जो कि दुबई से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मनोरमा जी, का हाल बा? तो जी नमस्ते, हमारा हाल चाल तो ठीक बा, और अपन बताएं कि रवा कैसन बानी। और मैसेज करने वाले हैं तो जी ज़रूर आप लोग नाम मेंशन करिए ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम आपकी आवाज़ में कितना मिठास भरा हुआ है। और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार साहब जो कि उर्फ हिटलरी बिहार से जुड़े हुए हैं, अभी हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और ऐसा कोई मिठास नहीं है, बस आप लोग के दुआ प्यार से मैं भी ये कार्यक्रम कर रही हूँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मनोरमा जी, और प्लीज़ मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और गाने की बोल है

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710 3992 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: 30 मिनट हो गए हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जय प्रकाश। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं जय किशोर प्रसाद जी। तो चलिए और लिख रहे हैं कि अपना बनाकर फिर कुछ दिन में बेगाना बना दिया, अपना बनाकर फिर कुछ दिन में बेगाना बना दिया, भर गया दिल हमसे तो मजबूरी का बहाना बना दिया। और लिख रहे हैं कि वाह क्या सॉन्ग है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए जी, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं जावेद जी जो कि धनबाद के रहने वाले हैं, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आँख किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर मैं आपको याद ना करूं तो हमारी दोस्ती किस काम की। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि नए पारा भी रही से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज कुमार ठाकुर, इसर राज पप्पू ठाकुर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मेरे से गुस्सा है क्या जी, प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिए, मैं कल से बोल रहा हूँ। तो जी बहुत आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार जी, तो बस कुछ देर वेट करिए, उससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश जो कि वॉइस के माध्यम से है।
1: मैम सलाम अलैकुम, मैं वो गाना सुनना है खिसरे का गाना, कोई बजा दीजिए, कोई भी अच्छा गाना चाहिए, सुपर सॉन्ग। आप कैसी है मैम, आप खाना खा ली, खेत कैसा है आपका?
0: तो मैं तो ठीक हूँ और आप बताइए कि आप कैसी हैं। और चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि वॉइस के माध्यम से था, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि हर बात को बताने का एक अंदाज होता है, हर धड़कन में एक राज होता है। जब तक ठोकर ना लगे वेवफाई की, हर किसी को अपने प्यार पे नाज होता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं अजीत कुमार जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्कार, विनोद कुमार चौहान विलेज खवई से है। और लिख रहे हैं कि क्या हाल बा मैडम जी, मेरा तो बहुत बढ़िया है, अब भी मैं मुंबई से सुन रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी विनोद जी, और आपकी भी हाजिरी एक बार फिर से लग गई। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शमसाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़ गए हैं, और लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम मेरा भी फरमाइश पूरी कर दीजिए। तो चलिए शमसाद जी, आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97007065।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं। और मैसेज करने वाले हैं शमशाद अली जी जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी जो कि लिख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार जोक है, और लिख रहे हैं कि एक आदमी ने बहुत शराब पी ली, शराबी, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल लेता। शराबी की पत्नी, अरे पहले अपना पैजामा तो बदल ले, कमर जले सुबह से बेवड़े बनकर मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम, और लिख रहे कि हम सुबह से शाम तक रेडियो रिमझिम सुनता रहता हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती जी की बक्सर के रहने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए, और गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से है, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने के बोल थे तो बिजोर बाड़ू, और इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करेंगे। और सबके तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुंच गया, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाय बाय मनोरमा दीदी। तो श्रोताओं मैं बता दूँ आप लोग को, और यहाँ पे जुड़े हुए लिख रहे हैं कि तीखे बातों से जख्म भरे तो नहीं है, ठुकरा दिए गए तो पर डरे तो नहीं है, क्या हुआ अगर दिल टूट गया है, मोहब्बत में हारे हैं मेरे तो नहीं है, मरे तो नहीं है। इसी के साथ बाय बाय, और मैसेज पूछा हुआ। धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527881, और अगर कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776665। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से लूँगी विदा, और सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश पूछी हुई लिंक के माध्यम से है। और मिलते हैं अगले दिन, नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती रेशमी ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती गमछा लुंगी साड़ी कुर्ता कंबल शॉल जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034648652 पे।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
11: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
12: भरोसे वाले से लेंगे,
11: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
12: और कीमत भी।
11: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
13: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
14: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
15: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
16: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
15: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
17: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
15: कॉल करें 85070-32042 पे।
18: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
19: प्रस्तुत बा निर्गुण रउआ सबके सेवा में छोट भाई के द्वारा, हम और बाबूजान भाई। देखी एके बाबूजान भाई से जौले बड़े कितना बढ़िया आ, गलती के क्षमा करब। प्रस्तुत बा निर्गुण, सुनी संसार में का होता आ का करे के चाहिए। शेरबा

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे। दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
2: सुनो दिल से।
7: कोई एक्टर है आपकी नजर में?
8: अरे हीरो, जो पहले टॉप का हीरो था अब फ्लॉप का हीरो, आइटम बॉय बनकर भोजपुरी में घिस रहा है।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
2: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9451211001।
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर के बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92-899-22-567 या 97-714-86-165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम।
4: सुनो दिल।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
5: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
6: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो,
7: हेलो, हेलो। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबके दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: जी जी नमस्ते मैम।
9: जी नमस्ते,
8: गाना सुनना था मैम।
9: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
8: कौन नाम है?
9: कहाँ से बोल रहे हैं? पौन जी। तो पौन जी और बताइए कैसे हैं आप?
8: ठीक है, बढ़िया है। आप लोग
9: बढ़िया
8: है?
9: जी जी।
8: हमको तो लगा कि आप आज बात नहीं होगा।
9: अच्छा,
8: 95 बार फोन किया है तब लगा।
9: अच्छा, कॉल तो लगी है, तो बता दीजिए अपनी फरमाइश।
8: खेसरिया है कोई, गाना सुना दीजिए।
9: कौन सा?
8: कोई भी।
9: आप इतना मुश्किल से कॉल किए, आप बताते तो बहुत ही अच्छा होता।
8: अच्छा अच्छा, मैहर में कलम चबा गई नहीं।
9: अच्छा।
8: बहुत अच्छा गाना है
9: जी।
8: जी
9: और गाना डेडिकेट भी करिएगा
8: आपका, सबसे पहले आपका और पूरा गोपालगंज जिला को।
9: ओके, तो चलिए पवन जी आपका गाना हम प्ले करते हैं।
8: जी जी नमस्ते।
9: जी नमस्ते।
10: ए जी, यूज

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: धन्यवाद आपको
1: जी। नाम बता दीजिए।
0: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया। दूध बांट रहे हैं, हमको भी गीत सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: मुझे मैंने ध्यान किया था ना, भूल गया भीड़ के चक्कर में।
1: हाँ,
0: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारा,
1: मुझे गा के बताएंगे आप? दोले
0: गाना गाने मुझे नहीं आता, बस खाली सुनता हूँ मैं, बस फरमाइश करने का शौक और सुनता हूँ।
1: चलिए कोई बात नहीं, एक बार और बता दीजिए गाने के बोल।
0: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारा, आपका नाम?
1: जी मैं मनोरमा।
0: अच्छा, आपसे परसों मेरी बात हुई थी ना?
1: जी शायद
0: शुक्रवार को मेरी आपसे बात हुई थी।
1: जी जी।
0: ऐसा ना कि अब आपकी और भारती जी की आवाज ना मुझे मतलब मिलता जुलता लगता है, इसलिए मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, कार्यक्रम तो पूरा हम सुनते हैं, वीडियो भेजते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि मैं किसको फीडबैक भेज रहा हूँ, मनोरमा जी को भेज रहा हूँ कि भारती जी। जब लोग नाम लेके करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ घूमने का।
1: जी जी। चलिए, वैसे आप लोग सोच से जुड़ते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: हम लोग तो जुड़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा देर से फीडबैक भेज पाते हैं, लेकिन जुड़े मैं 12 बजे जुड़ जाता हूँ। दूध ही बांटना होता है, दूध बांट के फ्री होता हूँ, जैसे फ्री होता हूँ तो फीडबैक भेज देता हूँ, फरमाइश भेज देता हूँ, और आज तो मेरी फरमाइश का दिन भी है।
1: चलिए तो फिर इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: जी जी। नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
7: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो, अस्सलाम, क्या खरीद है?
11: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: मैम, मेरा फोन उठाने के लिए थैंक यू। मैं कब से फोन लगा रही हूँ?
11: अच्छा जी, तो
10: बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आपसे बात करने के लिए।
11: अच्छा जी,
10: हाँ, आप मनोरमा मैम है ना?
11: जी
10: हाँ।
11: आप जी
10: बताइए मैम
11: जी,
10: घर में सब कोई ठीक है?
11: जी जी, सब कोई बढ़िया है। और आप ठीक है?
10: खाना खा ली है?
11: हाँ जी, खाना खा ली। और आप खाई है?
10: नहीं, मैं तो बना रही हूँ।
11: जी बन रहे, तो नाश्ता की है? ये बढ़िया है। और आपका बाबू कैसे हैं?
10: बाबू ठीक है, इससे मतलब आप पहचान गए हमको।
11: जी जी, आप जो बोल रही है ना?
10: और सब बताइए?
11: जी सब बढ़िया।
10: आज टीका लगने वाला था, लेके जाए थी इसको टीका लगाने के लिए, लेकिन नहीं लगा, अगला उसको लगेगा।
11: अच्छा, लगवा लीजिएगा, टाइम से तो सही रहेगा।
10: मेरे को गाना सुना है मैम,
11: बता दीजिए।
10: तो दिल अभी चाहते कहीं लगा लेंगे, यही वाला फोन सुनना है।
11: जी जी, गाना तो बहुत ही अच्छा है, क्या ये गा के मुझे बताइएगा?
10: मैम मेरे को ये गाना गाना नहीं,
11: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपसे गाना गवा के ही फरमाइश पूरी करेंगे।
10: अच्छा ठीक है,
11: जी जी आपको भी गाना सुनवाएंगे हम।
10: ठीक है मैम, तो ये गाना बजाइएगा।
11: जी जी चलिए, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
10: ठीक है, थैंक यू मैम।
11: जी वेलकम, करिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
10: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
0: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी। तो
0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: आलिया मंसूरी।
1: और कहाँ?
0: बलवंत सागर।
1: अच्छा जी, तो आलिया जी, क्या हेलो मैच में पहली बार कॉल की है?
0: हाँ, पहली बार कॉल की है।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको रेडियो रिंकिन का?
0: बहुत अच्छा लगता है, गाना सुनना है हमको।
1: बता दीजिए
0: सर, कौन से सॉन्ग? कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए सर।
1: कौन से
0: हेलो।
1: कोई भी सैड सॉन्ग?
0: हाँ,
1: तो आप इतना मुश्किल से कॉल की है आलिया जी, आप ही बताती तो अच्छा होता।
0: नहीं, कोई भी सुना दीजिए, फर्स्ट बार की है ना इसलिए।
1: अच्छा जी, कोई बात नहीं, फर्स्ट बार की है तो सोच लीजिए कौन सा गाना आप सुनिएगा, आपको टाइम दे रहे हैं हम।
0: नहीं सोचना, नहीं, कोई भी गाना सुना दीजिएगा सर। कौन सी?
1: अच्छा चलिए, और गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: आपको आज सही रेडियो रिंगिंग सुनने वालों को।
1: जी आलिया जी, वैसे आलिया जी, आप ये रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनती है, मोबाइल ऐप के जरिए या फिर एफएम के माध्यम?
0: मोबाइल से
1: अच्छा जी,
0: बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मोबाइल यूज करती हूँ।
1: अच्छा जी, मतलब मोबाइल ऐप के जरिए सुनती हैं।
0: हाँ
1: तो फिर आलिया जी, चलिए आपका गाना हम प्ले करते हैं
0: ठीक है। थैंक यू
1: जी। रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा।
9: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
9: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM Z पर।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: Now pick your phone up.
16: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
17: नमस्ते मैडम
18: जी। नमस्ते,
17: क्या समाचार था?
18: जी समाचार तो ठीक बा, अपन बताइए रोवा कैसन बानी?
17: क्या होता है, खाना पीना हो गल बा?
18: जी
17: हमारा एक गाना सुनना के बा।
18: जी जी बिल्कुल सुना, पहले अपन नाम बता दी।
17: आप मिंटू बोलते हैं?
18: और
17: कहाँ से? चौकी से।
18: कहाँ से बोलते हैं रोवा?
17: चौकी से।
18: अच्छा, ये कहाँ पड़े ला?
17: करवारा योर पकुदीपुर।
18: अच्छा अच्छा, रोवा हेलो मैचेस में पहली बार कॉल के लिए बानी। अच्छा, आज कौन सा गाना सुने?
17: हम लॉलीपॉप वाला गाना सुने।
18: लॉलीपॉप पवन सिंह के?
17: हाँ।
18: चलिए, गाना तो बहुत ही अच्छा बा।
17: हाँ।
18: अरे वही गाना हमके दुल्हन गा के सुना सकत नी।
10: हाँ तू लगावे जब लिपस्टिक ले ला आरा दिस्टिक लॉलीपॉप लागे लुटियाला।
18: जी जी और ये गाना कैसे सुनाए के विचार तनी।
10: हाँ हमारे एगो दोस्त बारी माला उनका के आएगो बबली बारी उनकरा के आ फिर ओका बस पूजा के जूरी के और रवा के जितना रेडियो झुनझुन सुने आ रहा सबके।
18: अच्छा जी चलिए तो फिर एक साथ और गाना हम प्ले करते
10: नहीं। थैंक यू
18: जी सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: गाना सुनना था।
1: बता दीजिए।
0: भोजपुरी सॉन्ग है।
1: हेलो। हाँ, कौन सा?
0: हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले पानी।
1: ओके है। ऐसे आप अपना नाम बता दीजिए।
0: आप भारती जी को सुना दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे, तो इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप अपना नाम बता दीजिए। हेलो।
0: हाँ,
1: आप प्रीति जी बोल रही है?
0: अच्छा।
1: चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: मेरा नाम प्रीति है, भारती को सुना दीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है।
1: ओके, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।

0: लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
1: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
5: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
10: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
11: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: Jab phone ring de bajte hai to kehte hain hello.
14: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8002-29-94-911। जी हाँ, 8002-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो, हेलो
16: नमस्कार
15: जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
16: जी मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरा से।
15: जी कैसे हैं आप?
16: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
15: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
16: काम भी और पूछ रहे हैं, खाना पीना हो गया, नाश्ता हो गया?
15: जी जी हो गया। और आपका हुआ खाना? असर पड़ रहा है।
16: मेरा नहीं हुआ है।
15: क्यों?
16: अब कुछ खाना है ना उल्टा पुल्टा, जिन लोग जैसे पूछते हैं वही सही, हमने पूछ दिया।
15: जी जी
16: हम मौसम कैसा है मैडम?
15: जी मौसम तो ठीक है,
16: पूछने का आधार है।
15: जी भले लोग खाए या ना खाए,
16: खाए ना खाए।
15: जी
16: और क्या क्या लोग पूछते हैं जी मैडम, और सब सुनाइए।
15: तो और सब बढ़िया है, आपकी तरफ मौसम कैसा है?
16: हमारे तरफ कल बारिश हुआ था।
15: अच्छा,
16: गोपालगंज में भी बारिश हुआ था कल?
15: जी जी कल तो हुआ था।
16: तो कल आपके तरफ उधर हुआ कि नहीं, रेडियो स्टेशन है उधर हुआ कि नहीं?
15: जी जी हुआ था सुबह में।
16: आइए जो है ना आप चले जाइएगा उधर पूरा, कल गए थे हम बढ़िया का, और इधर ही पानी हुआ है, बढ़िया के बाद उधर पानी हुआ ही नहीं।
15: अच्छा,
16: कल वही घूम रहे थे चारों तरफ, कम से कम 100 किलोमीटर का चक्कर लगाया कल यही तो घूमने में।
15: चलिए बढ़िया है,
16: बहुत बहुत दूर दूर जाकर घूमे, कहाँ कहाँ पानी हुआ है उसको पता लगाया है।
15: जी जी बाढ़ की संभावना भी तो,
16: बाढ़ का संभावना तो खत्म हो गया, उधर छपरा का लोग झेल रहा है।
15: जी जी
16: हम लोग के तरफ इधर गोपालगंज बचा हुआ है, बच गया। ये तो छोटा मोटा उधर उधर है मुजफ्फरपुर पटना वैशाली है, उधर गोपालगंज भी सही है, गोपालगंज कुछ नहीं।
15: जी जी
16: मैडम गाना सुनवा दीजिए।
15: जी बता दीजिए।
16: आप बातचीत में गाना?
15: नहीं।
16: अच्छा,
15: आवाज से कंफ्यूज रहते हैं
16: हम, बराबर कंफ्यूज हो जाते हैं।
15: अच्छा
16: अच्छा मैडम, तो बात हो गई क्या था?
15: जी जी फरमाइश बता दीजिए।
16: फरमाइश हम बता
15: जी,
16: झूठ बोले कौवे काटे हैं।
15: अच्छा
16: यही गाना बजा दीजिए।
15: ओके,
16: जिस तरीके से हम बात आज किया है ना मैडम आप,
15: जी जी,
16: तो उसमें गाना ये सूटेबल आता है कि झूठ बोले कौवा काटे, साले कौवे से डरियो।
15: जी जी और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
16: डेडिकेट किसके नाम में कर दे मैडम?
15: जिनको आप डेडिकेट करना चाहते हैं उनको कर दीजिए।
16: हम ये डेडिकेट रहेगा, चलिए नाम तो भारती जी के ले लिए हैं, आज भारती जी के नाम में डेडिकेट रहेगा। कुराना खाता कहीं सुन लिए हो, जिसके वक्त फरमाइश जाता है तो उसके नाम में डेडिकेट नहीं, जो फरमाइश नहीं ले रहा है नहीं करा रहा है तो उसके नाम में डेडिकेट।
15: चलिए
16: भी आज पटांगे हुआ, भारती जी के नाम में डेडिकेट रहेगा।
15: चलिए तो फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
16: ओके थैंक यू।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM
1: नमस्ते मैडम जी। बहुत दिन तक जा रहा था मेरा हुआ।
0: में। जी नमस्ते, आप काकरी फोन आवत रहा था तो
1: हाँ फोन आ रहा था, एक आध होता था बतियाते बतियाते 20 मिनट लगा देता,
0: अच्छा
1: और दूसरा सोचा था नंबर लिखे और बतियान से 2 मिनट 3 मिनट, और ये सोचा था कि नंबर चाहिए
0: जी।
1: सबको। तो मैं हमारा गाना फरमाइश हो जाए, हमारा गाना फरमाइश हो जाए, पूरा टाइम
0: जी। चलिए अब और फोन लाग गई बात, फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: गाना सुना दीजिए बंजारन फिल्म का, सब आएगा मेरे बंजार।
0: अच्छा वैसे नाम बता दीजिए अपना।
1: नाम
0: तो नेहा
1: ठीक बने
0: जी जी बिल्कुल ठीक
1: हम
0: बात
1: बहुत से 1 हफ्ता के बाद से फोन कर।
0: है। और जी गाना बताइए, वो गाना डेडिकेट भी करे के चाहता नहीं।
1: हाँ सबसे पहले आपको जितना रेडियो सब सुनता है भाई, बहुत अच्छे है सब दोस्त के साथ।
0: अच्छा ओके, तो चलिए फिर अब गाना हम प्ले करता नहीं।
1: जी मैडम जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
9: प्रणाम
10: जी। प्रणाम।
9: हमारे बात मनोरमा जी से होता क्या? रानी मुखर्जी से।
10: समझ नहीं रहा।
9: हमारे भैया रानी मुखर्जी जी से होता बात।
10: वैसे तो हम पहचान नहीं रहा के।
9: अच्छा जी, अभी पहचान वाली बनने के बाद एक खाती। बहुत बहुत धन्यवाद पहचाने खाती।
10: बहुत लेट हो गई, काफी कॉल करे।
9: क्या करूँ, इतना बिजी चलो क्या कहूँ। गाना बजते नहीं थे, टाइम बढ़ते जाता।
10: अरे गाना के क्या बताओ, जब कॉल
9: गाना तो हमें याद नहीं थे, पसंद से गाना समाज पसंद सुने के।
10: ठीक बात है जी, जी बिल्कुल।
9: चलिए ठीक है, हमारे पसंद से गाना बजाएंगे
10: और डेडिकेट भी करेंगे।
9: डेडिकेट जब हमारा पसंद बजाएंगे तो हम सुने, हमारे जितना नाम से जाने वाले। नाम दिनेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
10: जी जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: राम राम साहू गुना से।
1: जी जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: राम राम साहू गुना से बोल रहे हो।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया। मैं तीन लड़का आगा बारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जो गाना चाहिए।
1: जी जी, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबको सुनाना चाहूँ मैं तो, या कितना की सुनाऊ।
1: अच्छा जी,
0: हाँ ठीक है, तो
1: चलिए जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: Now pick your phone up.
8: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
9: रोगो के स्वागत बा, मैम का हाल बा, कैसन बानी?
10: जी हाल चाल तो ठीक बा, आपन बताई की रोगो कैसन बानी?
9: हमने के बनिए बानी सर, रोगो के जवाब से आशीर्वाद से।
10: अच्छा जी,
9: के मनोरमा मैम के बात ही मैम
10: पहचानी
9: पहचान तो कनी कम आवता बात ही मैम
10: जी का लागत है
9: ना मनोरमा मैम बोलते नी
10: जी
9: तो पहचान कनी हो रोगो पहचानी हम की बोलते नी जी
10: तो सिल्वा
9: सिल्वा
10: जी
9: हम ओम सेंचलर
10: जी जी वैसे बताया लेकिन फिर सोचने की पता ना रहा
9: बताओगे चाहे
10: अच्छा
9: जी, बहुत पता था तो मान लेते इसको अनारा घर में लाठी चला गई तो कहीं सही लग
10: जाओ। और बताए क्या होता है
9: अभी तो? और कॉल लगाओ तो नहीं, बहुत देर से कॉल लगाओ तो नहीं, सुनने की थोड़ा बहुत याद नहीं मैम से।
10: जी जी,
9: आवाज से कहे की वहाँ से आवाज है उसने पतला बा।
10: अच्छा,
9: पता चल गया, दोबारा दोबारा बोलेंगे तब पता चल रहा।
10: अच्छा जी, कौन सा गाना सुने
9: आज? सॉन्ग चला दे हम आई मिलन के रात पिक्चर के, कौन भी अपना पसंद से मैं सॉन्ग चला दे, ताकि सब मेरे सॉन्ग हमारे फेवरेट सॉन्ग
10: जी। डेडिकेट भी करे के चाहता नहीं?
9: पहले तो रोगा के दोनों मैम को, आज इतना लोग सुना था रेडियो दिन जिम फॉर्म सेंटर लागू जी के तरफ से सुना चाहता
10: नहीं। चलिए तो फिर एक ही साथ गाना हम प्ले करता नहीं
9: जी? ठीक है मैम, रोगा तो प्रणाम बा, सभी रेडियो दोस्त को भी प्रणाम बा हमारे तरफ।
10: जी जी रोगा, ठीक प्रणाम, सबके साथ रेडियो दिन जिम 90.4 FM।
9: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम जी।
1: जी नमस्ते,
0: मैं प्रदीप सानी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी प्रदीप जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है, अपना बताइए।
1: जी हम भी बढ़िया है। क्या हो रहा है?
0: काम कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, वैसे प्रदीप जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: दिल्ली से।
1: दिल्ली से, अच्छा।
0: सॉन्ग सुनना था।
1: बता दीजिए।
0: नवरात्रि का मैं बालक तू से रवा लिए, किशन कुमार जो है ना।
1: जी जी, कौन सा एक बार और बता दीजिए।
0: मैं बालक तू माता से रवा लिए।
1: जी जी प्रदीप जी, ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी, इंजन सुनने वाले सभी को, तो आपको भी, सभी दोस्तों को सुनना चाहते
1: हैं। ओके प्रदीप जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: जी,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
7: ठक ठक।
8: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
11: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello, hello.
12: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: जी मैम नमस्ते।
14: जी नमस्ते,
13: मैं संगम पासवान, ग्राम धनौटी, पोस्ट कटिया, थाना कटिया, जिला गोपालगंज, बिहार से बोल रहा हूँ मैम।
14: जी संगम जी, कैसे हैं आप?
13: मैम मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं, गोपालगंज कैसा है?
14: जी मैं भी बढ़िया हूँ और यहाँ का भी सब कोई ठीक है।
13: चलिए अच्छी चाहिए। थोड़ा ये हम लोग न्यूज देख रहे हैं तो दिल में डर बन रहा है ना कि बहुत बाढ़ आया हुआ है सुन रहे हैं।
14: जी जी बाढ़ तो आया हुआ है लेकिन हमारे तरफ नहीं आया।
13: अच्छा अच्छा, चलिए मैम अच्छी बात है, सब लोग खुशहाल रहे, मस्त रहे।
14: जी जी, तो संगम जी क्या आप हेलो माय चॉइस में पहली बार कॉल किए हैं?
13: नहीं मैम, मैं तो बहुत दिनों से कॉल करता हूँ, लगता है हमको 2010 के आसपास से मैं कॉल करता हूँ।
14: अच्छा जी
13: जी जी,
14: तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे पहली बार बात हो रही है मुझे।
13: तो शायद आपसे पहली बार बात हो रहा होगा, लेकिन और लोग भी बैठते हैं ना तो उन लोगों से बहुत सारे बात हुआ है।
14: अच्छा
13: जी जी, आपका नाम क्या है मैम?
14: जी मेरा नाम मनोरमा।
13: अच्छा नहीं मैम, आपसे बात हुआ है? है। हाँ हाँ आपसे बात हुआ है क्योंकि मेरे को याद है।
14: जी जी है।
13: मैं कटिया से बोल रहा हूँ, भोरे कटिया से। फिलहाल में मैं अभी पूना में हूँ।
14: जी जी, तो बात हुई है, याद आया मुझे।
13: जी जी, जी मैम आप कैसी हैं और रेडियो रिमझिम पूरा परिवार कैसा है?
14: जी मैं भी ठीक हूँ और यहाँ के रेडियो रिमझिम के परिवार भी सब खूब बढ़िया है। ऐसे मैं बता दूँ आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है।
13: जी मैम आपसे भी, आप लोगों से मैं जुड़ता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बहुत खुश होता हूँ कि चलिए मैं भी इस हेलो माय चॉइस का हिस्सा में भाग लिए। मुझे भी बहुत खुशी मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ आज।
14: जी बिल्कुल।
13: चांदनियन रूपवा तुहार कागज नियन गोर इतना गोर बाड़ हो, चांदनियन रूपवा तुहार कागज नियन कोर इतना गोर बाड़ हो, तुहार नइखे कौनो जोड़ तू बेजोर बाड़ हो, तू बेजोर बाड़ हो, बहे पुरवैया जौना रहिया से जालू फूल खिल जाला गोरी जब मुस्कालू, फूल खिल जाला गोरी जब मुस्कालू, तुहरे से रात होला अरे तुहरे से भोर इतना गोर बाड़ हो, तुहरे से रात होला अरे तुहरे से भोर।

0: जी मैम।
1: जी जी आपने तो बहुत ही अच्छा गाना है।
0: मैम मैं संगीत का बहुत शौकीन हूँ, मैं संगीत में बहुत मेरा मन लगता है, काम भी करता रहता हूँ तो फिर मैं मेरे को गाना गाने का बहुत मतलब वो है कि अच्छा लगता है।
1: जी जी बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका गाना।
0: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गाना को इतना आपने प्यार दिया।
1: जी बहुत ही अच्छा था। और यही गाना सुनिएगा।
0: नहीं मैम भोजपुरी अपने पसंद का कोई भी गाना मेरे लिए डेडिकेट कर दीजिए। एक मेरा दोस्त है अच्छेलाल प्रजापति जो देवरिया जिला के रहने वाले हैं, वो हाँ इसीलिए भाई के चॉइस था कि भोजपुरी गाना कोई अच्छा सा प्ले कीजिएगा।
1: तो संगम जी आप ही बताते तो बहुत ही अच्छा होता है, वैसे गाना तो इतना अच्छा गाया।
0: तो मेरे मैं बता रहा हूँ एक एक गाना है वो प्ले कर दीजिएगा। बताओ जान कौना बदरी में छुपल रहल, बताओ जान कौना दिलावा के बतिया बाड़ा ढेर दिन पे कहलू, दिलावा के बतिया बाड़ा ढेर दिन पे कहलू, बताओ जान कौना बदरी में छिपल रहलू, बताओ जान। यही गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने दोस्त को, ठीक है मैम।
1: जी गाना तो बहुत ही अच्छा।
0: जी मैम यही गाना
1: तो चलिए संग

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार,
0: कैसन बानी रहुआ
1: जी? हम तो ठीक बानी, आपन बताई रहुआ कैसन बानी
0: जी? हम भी बानी, अच्छा बानी। मनोरमा में बोलता नहीं?
1: हाँ जी, रहुआ भी अपन नाम बता दी
0: जी। हम पप्पू कुमार बोला था, नहीं पड़ना बड़ा रिया से।
1: अच्छा जी, कैसन बानी रहुआ?
0: बस ठीक बानी रहुआ, लेकिन के दुआ आशीर्वाद बा, बढ़िया बा। और सब आगे लोग कैसन बानी
1: जी? सबके बढ़िया बानी। एक बीच से कौन सा गाना सुने?
0: गाना आज हमरे के सुना दे, मत कर इतना गुरूर चेहरे पे है बेहसी, ऐसा कुछ गाना है, आदमी खिलौना है फिल्म का गाना है।
1: और ये गाना क्योंकि सुनवाई के भी चाहता नहीं?
0: गाना सुनवा के बाद उत्तम सोनी जी बानी, सन्यासी बाबा रंजन जी बानी, माँ शंकर भाई बानी, रानी जी बानी, कबनम जी बानी, अनीश बानी, गुड़िया कविता और कमरान रशीद जी बानी, रामा जी भाई बानी, सब के डेलीकेट रही मैम। और सब मैम बढ़िया बा
1: जी? जी सब बढ़िया बा।
0: चलिए ठीक बात, गाना सुना दी
1: जी। चलिए तरह आप गाना प्ले करता है, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: नमस्कार मैम।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो मैम, नमस्ते।
9: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: जी धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं RMC से।
9: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है?
8: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं आपका शो का इंतजार करते हुए मैम। तो अभी तो बहुत टाइम हो गया, हम सोचा अभी टाइम समाप्त हो गया होगा रिकॉर्डिंग का, बाकी तो चलते चलते फोन शामिल हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है।
9: जी जी, तो कॉल तो लग गया, तो बता दीजिए फरमाएं।
8: जी गाने के बोल है, दौलत तो दुनिया सलाम चलती है, यही गाना सुनना चाहते हैं। सुनवाएंगे कितने रेडियो सुनते दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
9: किसने जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
8: धन्यवाद मैम।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: हाँ सब बताइए।
0: जी सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे।
1: हम भी सही हैं।
0: तो क्या हो रहा था?
1: काम हो रहा है।
0: अच्छा,
1: तो फोन लगाता है तो लगता ही नहीं है।
0: अच्छा,
1: क्या कोई दुश्मनी है क्या?
0: नहीं नहीं, आप लोग से भरा क्या ही दुश्मनी हो सकती है।
1: कौन ठीक कहीं हो सकता है?
0: नहीं नहीं,
1: मेरा नाम है रवि कुमार।
0: और कहाँ से?
1: दिल्ली से।
0: अच्छा,
1: और सब बताइए। काला काला सरिया, काला काला सरिया लाई दी।
0: ये गाना आप गा के बताएंगे मुझे?
1: नहीं हम नहीं गाते हैं गाना वाना।
0: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। और गाना किसी को सुनवाइएगा भी।
1: हाँ, दिनेश कुमार मिश्रा और आप हैं और भारती में सोनी में।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।

0: pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029494111 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62 112 पे।
11: प्रसाद क्लिनिक।
12: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
11: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
6: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
15: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
6: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
15: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
6: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
15: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
16: एपिसोड नंबर 55 55।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फल मूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: एपिसोड नंबर 55, 55।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फल मूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 150 उम्मीदवार मैदान में। विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की हुई बैठक, जदयू विधायक अनंत सिंह ने अनुज सिंह के समर्थन की बात दोहराई। और दिल्ली में संभावित यातायात जाम को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने आज तेजस राजधानी समेत 4 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्त कार्रवाई और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज पटना में विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया। श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में अपराध नियंत्रण और गंभीर आपराधिक मामलों में पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 150 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज नाम वापसी के अंतिम दिन सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय जयराम राय और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अर्चिता प्रकाश ने अपना नामांकन वापस लिया। एक रिपोर्ट।
1: विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कुल 90 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 40 उम्मीदवार सारण स्नातक क्षेत्र से हैं। पटना स्नातक से 18, तिरहुत से 17 और कोसी स्नातक से 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ पटना और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 18-18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 13 और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि इन सीटों के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। समाचार कक्ष से कल्पना झा।
0: विधान परिषद चुनाव को लेकर आज पटना में लोक सेवक आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में चुनावी रणनीति और एनडीए नेताओं के साझा चुनाव अभियान पर चर्चा हुई। साथ ही पटना स्नातक क्षेत्र को लेकर जदयू में चल रहे अंतर कलह पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राम पुकार सिन्हा के निर्दलीय नामांकन का मुद्दा भी उठा। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में मोकामा विधायक अनंत सिंह भी मौजूद थे। बैठक से पहले संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार से उनका व्यक्तिगत विरोध है। वे जनसुराज के अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं। एनडीए से उनकी कोई नाराजगी नहीं है।
2: सालों बैठक होता है, सालों इलेक्शन होता है।
3: हाँ, जैसे है वो उसी रहे।
2: अनुज सिंह का हम समर्थन करेंगे।
0: प्रदेश कांग्रेस की आज पटना के सदाकत आश्रम में एक बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बैठक में मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में विधान परिषद चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे प्रदर्शन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर पटना में कल हुए विरोध प्रदर्शन के बाद महागठबंधन के भीतर ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पटना में हुए प्रदर्शन के दौरान महागठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी समन्वय की कमी दिखी। प्रदर्शन के निर्धारित समय से करीब आधे घंटे पहले ही राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ मार्च पर निकल गए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि प्रदर्शन का समय कैसे और क्यों बदला गया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।
5: स्पष्ट तौर पर कह दूं कि टाइम को पता नहीं कब कैसे चेंज हुआ, हम लोग अपने टाइम पर पहुंच गए थे लेकिन टाइम कुछ ही बिफोर हम लोग को तो अपने टाइम पर।
4: पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भाजपा की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाया।
6: उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति आती भी नहीं है। उन्हें लालू यादव जी की विरासत में मिली और उन्हें लगता है कि इसी भरोसे नदिया पार वह गठबंधन धर्म को समझते ही स्वयं नेता बने हुए।
4: प्रदर्शन के दौरान सामने आया घटनाक्रम ने महागठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी समन्वय को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: पूर्व मध्य रेल ने कल दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास संभावित यातायात जाम को देखते हुए आज 4 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। इनमें मगध एक्सप्रेस, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों को सफर शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। फरक्का जलसंधि के मुद्दे पर आज पटना स्थित जदयू प्रदेश मुख्यालय में नीतीश संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने संधि के नवीकरण में बिहार की जरूरतों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को जल संधि के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। किसी ने गांव की पगडंडी पर चलते हुए समाज की सेवा की, किसी ने अपनी कला को पीढ़ियों तक पहुंचाया। इनमें से कई लोग कभी सम्मान की तलाश में नहीं निकले, लेकिन जब काम सच्चा हो तो पहचान खुद रास्ता खोज लेती है। इसी सोच ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों को जन जन से जोड़ने का काम किया है। सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष श्रृंखला में आज जन जन का पद्म सम्मान पर एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को व्यापक और जन भागीदारी वाला बनाया। नतीजा ये हुआ कि गांवों और छोटे कस्बों से निकलने वाली प्रतिभाओं को भी राष्ट्रीय मंच मिला। पद्म सम्मान सिर्फ प्रसिद्ध चेहरों की पहचान नहीं रहे, बल्कि उन अनगिनत लोगों की उपलब्धियों को सामने लाने का माध्यम बने जिन्होंने अपने काम से समाज में बदलाव लाया।
2: हमारे देश में पद्म अवार्ड कैसे मिलते थे, आपने अगर कोशिश की होगी तो आपको रास्ता मालूम होगा। हमने छोटा सा रिफॉर्म किया, हमने रिकमेंडेशन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं।

0: कार्य क्षेत्र बढ़ता है और कार्य करने की जो प्रतिभा है वो भी बढ़ती है और निखार आता है, इसलिए सम्मान की मिलना ही चाहिए।
1: पद्म सम्मान ने उन आवाजों को पहचान देने का काम किया जो वर्षों से देश के अलग अलग कोनों में अपने कर्म और कला से समाज को समृद्ध कर रही हैं। यानी अब सम्मान सिर्फ नाम का नहीं, काम का भी है और जन जन का पद्मा इसी बदलती पहचान की कहानी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री की रिपोर्ट।
2: भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उन्हें यह सम्मान शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। तमिल मूल के परिवार में जन्मी 85 वर्षीय नवी पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने नवी पिल्लई को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। आज विश्व डाक दिवस है। इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। बिहार डाक परिमंडल की मुख्य डाक महाध्यक्ष शशि शालिनी कुंजर ने बताया कि विश्व डाक दिवस पर आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत हुई है। इस दौरान वित्तीय समावेशन, डाक और पार्सल सेवाओं तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
3: हमारे 25 डिवीजन है और आरएमएस 4 डिवीजन है, तो जिसके जरिए हम लोग अलग अलग दिन को अलग दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसे फ्लैटली डे है जिसके जरिए हम डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने जा रहे हैं और स्कूल के बच्चों के बीच में हम क्विज कर रहे हैं, वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं जिससे कि लोगों को फ्लैटली के बारे में जानकारी दी जा सके और इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। उसी तरह से हम लोग वित्तीय समावेशन दिवस भी मना रहे हैं जिसके जरिए हम लोगों के बीच में जाके हम लोग कैंप आयोजित कर रहे हैं। तो जितने तरह की हमारी सेवाएं वो हम लोगों तक
2: राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मधुबनी जिले के तोहबी बाजार में जाली नोट और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ठिकानों पर छापेमारी की है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुभी बाजार में यह छापेमारी हीरा देवी महासेठ उर्फ चाची से जुड़े कथित तस्करी नेटवर्क की जांच के सिलसिले में की गई। सभी ठिकानों को एनआईए ने सील कर दिया है। जांच एजेंसियों को इस नेटवर्क के मधुबनी से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फैले होने की संदेह है। आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए जाली भारतीय मुद्रा और मादक पदार्थों की तस्करी की जाती थी। मामले में हीरा देवी महासेठ और

यह कार्रवाई की गई है। राजेश्वरी पांडे पर ज्ञात आय से 100% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर पोखरिया में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार तस्करी के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों के घर से विदेशी पिस्तौल, 2 देसी पिस्तौल, 1 देसी मस्केट, 3 मैगजीन और 39 कारतूस के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। इधर मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर गांव में पुलिस ने एक घर से 23 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस मामले में परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ सासाराम नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियारों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से एसएसबी और पुलिस की टीम ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। कटिहार जिला के सहायक थाना क्षेत्र स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में हुई जेवरात चोरी की घटना के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के

निर्देश। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 150 उम्मीदवार मैदान में। विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की हुई बैठक, जदयू विधायक अनंत सिंह ने अनुज सिंह के समर्थन की बात दोहराई और दिल्ली में संभावित यातायात जाम को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने आज तेजस राजधानी समेत 4 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:47 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
6: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
10: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
6: आइए खादी अपनाइए, जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
10: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
6: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
10: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम।
11: सुनो दिल

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
8: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
9: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
8: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
9: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
8: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
9: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
11: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
12: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर के बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
6: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
5: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
6: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
5: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
6: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
5: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
8: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
7: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
8: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
7: कहाँ?
8: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
6: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
5: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
6: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
5: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
6: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
5: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
9: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
11: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड में प्रबंधक विधि का एक पद भरा जाना है। ऊपरी आयु सीमा है 50 वर्ष। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.jkdfc.org। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रधान परामर्शक, वरिष्ठ परामर्शक, वरिष्ठ परामर्शक जनसंपर्क एवं मीडिया, वरिष्ठ परामर्शक विधि निदेशालय इन स्पेस तथा तकनीकी सहायक और कनिष्ठ परामर्शक तकनीकी निदेशालय। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.inspace.gov.in। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तकनीकी सहायक, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी और सूचना सहायक, एसएएस सहायक, फार्मासिस्ट, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला की वेबसाइट nita.ac.in। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन पदों पर नियुक्ति परिषद के अंतर्गत अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व यानी ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी के अधीन होगी। नियुक्त कर्मचारियों को BMHRC के कर्मचारियों के अनुसार लागू नियम के मुताबिक सामान्य भत्ते और अन्य सुविधाएं दे होंगी। विस्तृत विज्ञापन, पदों के विवरण, शैक्षणिक एवं अन्य पात्रता मानदंड तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.bmhrc.ac.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान, मैदानगढ़ी नई दिल्ली में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मुख्य नर्सिंग अधिकारी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वरिष्ठ भंडार अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता वातानुकूलन, प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, भंडार अधिकारी और सहायक अभियंता वातानुकूलन एवं प्रशीतन। अनिवार्य पात्रता शर्तों, अन्य विवरणों और नियम और शर्तों के लिए देखिए एम्स की वेबसाइट www.aims.edu। इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं www.aims.exams.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
12: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
13: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
14: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
13: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
15: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
16: भरोसे वाले से लेंगे,
15: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
16: और कीमत भी।
15: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
17: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
18: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
19: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
20: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
19: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
21: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
19: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
14: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
14: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
22: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
22: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
23: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
24: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
23: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
24: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
23: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
24: जानकारी है तो कॉल करें 62052-61112 पे।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
4: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
7: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र,

0: कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
3: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
2: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपद क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
6: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
7: सेमीकंडक्टर जर्नी
8: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
7: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
5: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारत की टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
7: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग। दिस
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
12: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
11: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
10: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
11: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
10: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
11: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
16: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। गड़बड़ करने वाले शिक्षकों पर लगातार हो रही है शिक्षा विभाग की कार्रवाई। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है अभियान, कई वाहन चालकों पर हुआ जुर्माना। कांशी राम की पुण्यतिथि पर पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। डेंगू तथा चिकन गुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग हो गया है अलर्ट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और तमाम थाना अध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस गोष्ठी में जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित एवं गंभीर कांडों के त्वरित उद्भेदन, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा आगामी महावीरीय अखाड़ा और दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था एवं आम जन की सुरक्षा को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और गृह भेदन से संबंधित लंबित और गंभीर कांडों की समीक्षा करते हुए इनके त्वरित उद्भेदन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अज्ञात कांडों में प्रभावी परेड तथा गंभीर कांडों में प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। पूर्व के लंबित तथा अनुद्वादित गृह भेदन कांडों के उद्भेदन को लेकर विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। वहीं अभियान के दौरान सघन छापेमारी, वांछित और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा पूर्व के अभियुक्तों बेल आउट अपराधियों और संदिग्ध तथा सक्रिय अपराधियों का सत्यापन और ई डोजियर को अद्यतन करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गृह भेदन कांडों के लिए विशेष टीम गठित करने का भी निर्देश दिया गया। प्रत्येक थाने में लंबे समय से बंद पड़े मकानों की सूची तैयार कर उनकी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। चौकीदारों से नियमित रूप से क्षेत्र की बिंदुवार जानकारी प्राप्त कर बंद कमरों, संदिग्ध व्यक्तियों, अवैध गतिविधियों, शराब और मादक पदार्थों के कारोबार तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित फीडबैक लेने और प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल सत्यापन कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। महावीरी अखाड़ा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। अखाड़ा वाले थाना क्षेत्रों में पड़ोसी थाना क्षेत्रों से समन्वय स्थापित कर थाना बॉर्डर पर विशेष वाहन चेकिंग, मोटरसाइकिल से आने वाले युवकों की प्रभावी फिक्सिंग करने और अखाड़ा के आसपास मोबाइल माइक्रो साइकिल पेट्रोलिंग तथा कम से कम 100 मीटर क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। महावीरी अखाड़ा और दुर्गा पूजा के दौरान चाकूबाजी की घटनाओं की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। किसी भी आयोजन की आड़ में चाकूबाजी की घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना होने पर संबंधित स्तर पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही की गंभीरता से समीक्षा भी की जाएगी। गड़बड़ करने वाले शिक्षकों पर लगातार शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है। एक दर्जन से अधिक शिक्षकों पर अब तक कार्रवाई की बात सामने आई है। अभी ताजा मामला फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में शिक्षक पर कार्रवाई का आया है, जिसमें विशिष्ट शिक्षक पंकज कुमार यादव को फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में निलंबित किया गया है। मामला बैकुंठपुर के खोमारीपुर विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक पंकज कुमार यादव का है। विभागीय आदेश की अवहेलना और वेतन भुगतान समेत 5 आरोप लगे हैं। अनुसार कार्रवाई के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन करते हुए विजयपुर प्रखंड संसाधन केंद्र पर इनको नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में विजयपुर संसाधन केंद्र ही इनका मुख्यालय होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने यह कार्रवाई की है। इधर लापरवाही के आरोप में प्रधान शिक्षक मनोज कुमार को भी निलंबित किया गया। यह मामला बरौली प्रखंड के 9 प्राथमिक विद्यालय सदौआ भगेलू रावत के टोला में निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के मामले का बताया जा रहा है। स्कूल के कमरों में पंखे नहीं थे, बोरिंग खराब थी, हैंड वॉश स्टेशन टूटा और दोनों शौचालयों की स्थिति खराब थी। विद्यालय में रंग रोगन का कार्य भी अधूरा पाया गया था। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इनको निलंबित करने का आदेश दिया है। सिधवलिया के राजकीय मध्य विद्यालय अमरपुरा जगीरहा की शिक्षिका विभा कुमारी पर भी आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है। प्रतिनियोजन के बावजूद नए विद्यालय में योगदान नहीं देने का मामला है। मूल विद्यालय में ही रहने और अनुचित अमर्यादित भाषा के प्रयोग का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा विभाग ने निलंबन के कार्रवाई की अनुशंसा की है। शिक्षिका के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की तैयारी से विद्यालय में हड़कंप मच गया। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सड़क सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने की दिशा में पुलिस की यह प्रभावी कार्रवाई है। इसको लेकर आज पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक सोमेश मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
17: चलिए पहले बहुत बहुत नमस्कार पूरा गोपालगंज वासियों को। और अभी एक एस्ट्राइप चला रहे हैं, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है पलोदी इंसिडेंट को लेके, राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों शोल्डर साइड भी कोई गाड़ी पार्क ना किया जाए और ना ही गाड़ी को अव्यवस्थित रूप से लगाया जाए, क्योंकि इससे दुर्घटना घटने की पूरी संभावना बनी रहती है, दुर्घटना घटती भी है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 531 है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 में मिल जाती है, और आप देख रहे होंगे कि परसों यहाँ उद्घाटन हुआ था और ये मर्ज किया गया है दोनों रास्ते को, तो ये काफी व्यस्त एरिया हो गया है और दुर्घटना घटने की पूरी संभावना यहाँ बनी रहती है, और पहले भी यहाँ बहुत ही भयावह दुर्घटना घटी है। तो इसको देखते हुए मैं था नहीं तो 2 महीने ट्रेनिंग में गया हुआ था, तो अभी इसको अभियान चला रहे हैं और जितनी भी गाड़ी है सब पे चलान हो रहा है। सबको 2 दिन पहले भी मैं व्यक्तिगत रूप से आके सबको बोला भी था कि गाड़ी यहाँ ना लगाए, गाड़ी के आगे के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, प्राइवेट ही है, पेड पार्किंग है, तो वहाँ लगाए, क्योंकि इससे जान माल के नुकसान क्यों करना, आप 100 रुपया बचाने के चक्कर में पब्लिक को नुकसान देना या किसी की जान माल को क्षति पहुँचाना ये किसी तरह से उचित नहीं है। इसी दरमियान में अभियान चला रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और कुछ हो तो समन की राशि का अभी उस पे सजा कर रहे हैं।
16: डेंगू और चिकनगुनिया के संभावित बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इलाज से लेकर अस्पतालों की तैयारी तक को स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस लिया है। इसी क्रम में सदर अस्पताल में चिकित्सकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें जिले के प्रत्येक प्रखंड से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और एक एक मेडिकल ऑफिसर के अलावा अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक और मेडिकल ऑफिसर तथा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और मेडिकल ऑफिसर शामिल हुए। प्रशिक्षण का उद्देश्य डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की समय पर पहचान, सही क्लिनिकल प्रबंधन और जटिलताओं की रोकथाम के लिए चिकित्सकों को तैयार करना बताया जा रहा है। ACMO डॉक्टर अरविंद कुमार की अध्यक्षता में जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण और जिला वेक्टर रोग सलाहकार समिति के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकों को प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन के संकेत, मूत्र उत्पादन, हेमाटोक्रिट और पल्स प्रेशर की निगरानी के महत्व की जानकारी दी गई। चिकित्सकों को समझाया गया कि गंभीर स्थिति की पहचान के लिए केवल प्लेटलेट संख्या पर निर्भर रहने के बजाय मरीज की समग्र चिकित्सकीय लक्षणों और निगरानी के अन्य मानकों पर भी ध्यान देना जरूरी है। मरीज की स्थिति में अचानक बदलाव होने पर समय रहते आवश्यक उपचार शुरू करने पर भी विशेष जोर दिया गया। जिला वेक्टर रोग सलाहकार अमित कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम में डेंगू फैलाने वाला एडिस मच्छर घरों के आसपास जमा साफ पानी में पनप जाते हैं। टूटे फूटे बर्तन, गमले, पुराने टायर, प्लास्टिक या कागज के कप, नारियल के खोल इत्यादि में ऐसे मच्छरों की पनपने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में लोगों को घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए ताकि ऐसे मच्छरों के पनपने पर रोक लग सके। लोगों से अपील की गई कि वे अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं। लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द या अन्य संबंधित लक्षण होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह और जांच कराएं। समय पर पहचान और उपचार से जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर आज पुलिस उपाधीक्षक विजय मिश्रा ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। गंडक नदी में नाव से 276 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी गई है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर नाव पर शराब छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने नाव तथा शराब को जब्त कर लिया है और अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट के बथना कुट्टी के पास भी एक मोटरसाइकिल से 36 लीटर से अधिक शराब पकड़ी है। इसमें भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल जब्त करते हुए मोटरसाइकिल के आधार पर मोटरसाइकिल मालिक और अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इधर उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के नंदलाल मठिया सड़क के किनारे अंदर बांसवारी से 18 पेटी देशी शराब को जब्त किया है। इसमें भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गोपालगंज के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पिता जो सेमरा पंचायत के मुखिया विक्रमा राम हैं, उन्होंने पटना में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अपने भारी संख्या में समर्थकों के साथ वे पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के सदस्य बन गए, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में युवाओं का मौसम के अनुकूल स्मार्ट कृषि हेतु कौशल विकास विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं और किसानों को मौसम आधारित कृषि प्रबंधन, जलवायु सहनशीलता, मौसम पूर्वानुमान तथा आधुनिक कृषि मौसम सेवाओं के व्यवहारिक उपयोग से परिचित कराना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार के पूर्णिया, वैशाली, बांका, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, जमुई, पटना एवं बक्सर जिले के कुल 20 युवा किसान भाग ले रहे हैं। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप दास और निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा संदेश दिया गया कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि प्रबंधन की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समय पर मौसम पूर्वानुमान एवं वैज्ञानिक सलाह को कृषि निर्णयों से जोड़कर फसल उत्पादन के जोखिम को कम किया जा सकता है तथा किसानों की आय और कृषि की स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। नगर थाना की पुलिस ने 111 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और नगर परिषद के पार्किंग में पुलिस ने छापेमारी की, जहां एक ड्रम से 48 लीटर देशी शराब और 66 लीटर विदेशी शराब मिली। कुल 111 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने कांड दर्ज कर अज्ञात के विरुद्ध अनुसंधान शुरू कर दिया है।
18: इधर धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 के लंबित सीएमआर के समतुल्य अवशेष धान की राशि संबंधित पैक्स समिति के कैश क्रेडिट खाते में 13/10/2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराने का निर्देश दिया गया है। सभी शाखा प्रबंधक और पैक्स के अध्यक्ष तथा प्रबंधकों को यह राशि जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया है।
16: गोपालगंज के एडीएम राजेश्वरी पांडे के कई ठिकानों पर SVU की छापेमारी की खबर आ जाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत के सत्यापन के बाद SVU ने छापेमारी कर जांच पड़ताल शुरू किया है। संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि विशेष निगरानी विभाग के अधिकारी इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया खबरों के अनुसार इस कार्रवाई की बात सामने आ रही है।
19: ये इनके विरुद्ध में मतलब कि SVU विशेष निगरानी का पटना 26/26 पद का दुरुपयोग करके आय से अधिक संपत्ति का मामला था, दर्ज किया गया था, जिसमें विभिन्न टीम स्थानों पर जो है सर्च वारंट के साथ सर्च कर रही है। तो वो अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे जी
20: आय से अधिक संपत्ति का मामला,
19: हाँ आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके विरुद्ध दर्ज हुआ है, उसी में रेट चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स है तो फिर उसका मूल्यांकन होगा, उसके बाद ही तय होगा क्या है।
16: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। गड़बड़ करने वाले शिक्षकों पर लगातार हो रही है शिक्षा विभाग की कार्रवाई। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है अभियान, कई वाहन चालकों पर हुआ जुर्माना। कांशीराम की पुण्यतिथि पर पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। डेंगू तथा चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग हो गया है अलर्ट। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
21: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
22: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
21: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
22: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
21: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
22: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
21: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
23: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
24: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
23: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
24: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
25: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
26: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
25: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
27: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
28: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
21: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
29: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
21: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
21: संपर्क करें 9939365923।
30: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
31: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो छिम 94.4 FM पे कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, फिर कुछ ही समय में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी, फिर गाने के साथ इंजॉय करना है। तो यदि आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो बिल्कुल फरमाएं, हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे अभी टेक्स्ट मैसेज करें। यहाँ पे कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे पहला मैसेज मेरे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या हाल है सर जी, विलेज शबिया फील्ड गोपालगंज से कमलेश जी का मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मुझे सॉन्ग सुनना है फिल्म जान से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते, सॉन्ग इश्क हंसाता है इश्क रुलाता है। और इस मैसेज को करती हैं शुक्लवार से निशा, तो आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हम भी जुड़ गए हैं सोनू बाबू, कैसे हैं, हम भी ठीक है। तो बिल्कुल हम भी बढ़िया हैं, आप सभी के बीच उपस्थित हैं, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि शुक्रवार की रात रेडियो रिमझिम का साथ, सोनू सर की आवाज़ में घुल जाइए मिठास, दोस्ती की तराने खुशियों की बरसात, सुनते सुनते खिल उठे हर दिल की रात। हेलो हाय नमस्कार, आज सॉन्ग सुना दीजिएगा, छुप गए सारे नज़ारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाई दिन में रात हो गई। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। राघव जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेघनाथ माझी जी सर नमस्ते, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बन रहे हमारे साथ, कहते हैं कि नवरात्र चढ़ने वाला है रविवार को, आज मुझे सुभाष राजा का देवी गीत सुना दीजिए। एकदम सुनाएंगे, फिलहाल बन रहे आप हमारे साथ। पहले गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और प्ले करते हैं कमलेश जी की सॉन्ग रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। यदि आप भी इस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, इस तरह के गाने आप पसंद करते हैं या ओल्ड इज गोल्ड गाने पसंद करते हैं रफ़ी साहब और इनके सारे साथीगढ़ जैसे सिंगर का, तो आप फरमाइश सकते हैं। और फरमाइश करने के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है निशा शुक्लवा से की है, इश्क हंसाता है इश्क रुलाता है। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनू सर जी, मैं महबूब आलम केवला कटिहार से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय प्रणाम सलाम सर जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती विलेज उजवलिया उचका गांव प्रखंड से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, गाना बजाने के लिए थैंक यू। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमसन सुनने के लिए कमलेश जी, बन रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं।
1: मैं अक्सर लोगों का

0: इसलिए जा रही है कि समीर तुझसे प्यार नहीं करता?
1: नहीं, इसलिए जा रही हूँ कि मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ। समीर ने एक फैसला किया है और मैंने उस फैसले को मान लिया। मैं समीर का प्यार नहीं बन सकती, ना सही, मैं उसकी मजबूरी नहीं बनना चाहती।
2: केपी, ये मुस्कान को दे देना और साथ में ये भी।
3: मुस्कान मैडम,

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
0: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम झिम 90.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स दिल से आपको, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेम झिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सर जी मैं भी जुड़ गई हूँ निशु फ्रॉम झिरवा से सुपर सॉन्ग। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचे हुए और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं मेघनाथ माझी जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है देवी गीत सुभाष राजा जी की आवाज़ में। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के सॉन्ग रेडियो रेमसी 94 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब, और ये देवी गीत है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए तो आगे बढ़ा जाए और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। और अगले गाने की फरमाइश किए हुए हैं राघव जी, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। छिप गई सारे नज़ारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाई दिन में रात हो गई। तो चलिए राघव जी आपकी फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज भी किए हुए हैं कि सोनू सर की आवाज़ सुनने को दिल बेकरार है, रेडियो रिमझिम के शो का हमें बेसब्री से इंतज़ार है, हम आपके पास है बस सुनने की चाहत लिए, आपकी मीठी आवाज़ सुनने चेहरे पे मुस्कान लिए। सोनू सर के सॉन्ग महफिल में खुशियों की बरसात हो, रेडियो के सारे दोस्तों के दिलों में प्यार की बात हो, आपकी आवाज़ गूंजे हर दिल झूम जाए, रेडियो रिमझिम का शो सुनकर हर दोस्त खुशी से मुस्कुराए। बिल्कुल खुशी से रहेगा। और आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: सुनो दिल से।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रूम छिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं, और लिखा गया है कि हम लाइन में खड़े हैं। सुनो जी, बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और आप ही के गाने हम बजाने ही वाले हैं। तब तक आपका मैसेज पहुंच चुका है, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। सुनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, और कल से काजल लगा कर निकलिएगा, आप किसी की नज़र ना लग जाए। और मिसेस को करते हैं, दिलीप जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मिसेस पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि राघव भाई कौन सा कंपनी का काजल लगाए कि दिन में रात हो गई, हम भी जाने कि

कहते हैं कि आगे की और कौन सा दिन वाला काजल है जो रात को लगा लिया जाए तो दिन हो जाएगा, ये भी बताइएगा। बिल्कुल राघव जी सुन रहे होंगे तो बिल्कुल बताएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि सुपर संग वेरी नाइस मैसेज करती हैं निशा भारती। और आगे यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सर गाना प्ले करने के लिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमएचएम सुनने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है महबूब आलम जी के तरफ से कटिहार से, और गाने की फरमाइश एक फूल दो मालिन से, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, डेडिकेट करते हैं आजाद अंसारी, वीरेंद्र गुप्ता, रविंदर और रुबीना और सभी दोस्तों को। सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सब। रेडियो 104 FM पे आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम 6.4 FM पे सुन रहे थे। अभी हम सभी महबूब जी की फरमाइश और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि कौन है सर, थोड़ा नाम बताइए तो। और इस मैसेज को करते हैं राघव जी। राघव जी और कोई नहीं, वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया एपिसोड ने पाल बॉर्डर से पूछ रहे थे कि कौन से कंपनी का काजल लगाते हैं, ताकि हम भी दिला सके अपने मैडम जी को, क्योंकि उनको भी दिन में रात में दिन करना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या महबूब भाई इतने दिन कहाँ थे, क्या इन्हीं के चक्कर में थे क्या, पर अभी तो दंड लेकर खड़ी हैं, तो कार्यक्रम में आइए और पीछे इनके ना पड़े। शुक्रिया हमें सुनाने के लिए। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वाओ सुपर सॉन्ग। और मैसेज करते हैं सुरभि नवादा गोपालगंज से, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश यहाँ पे बंगरा से पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को पहुंचाने वाले फरीदा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सब रेडियो रेम 6.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे आप सब सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें फरमाइश का और समय जो है समाप्ति का हो चुका है और गाने अभी आगे लंबे हैं, सो इसी को अंतिम गाने मानते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। तो आप सब सुनते रहें और हमें दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले सप्ताह, नमस्कार।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा बेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मधुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी एआईएनआरसी को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले

0: में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेड डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए कल यानी 10/10/2026 शनिवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: बाजी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: हमनी के मिलन अब नेखे हो सकत, कुछ मजबूरी बा जेकरा कारण हम तो उसे ना मिल सकीला।
2: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे। आज आंसू पोछत अनि एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिंजन 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबके दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494। जी हाँ, 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: जी जी, नमस्ते मैम।
5: जी नमस्ते,
4: गाना सुनना था मैम।
5: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
4: कौन नाम है,
5: कहाँ से बोल रहे हैं? पवन जी। तो पवन जी और बताइए कैसे हैं आप?
4: ठीक है, बढ़िया है। आप लोग बढ़िया है?
5: जी जी,
4: हमको तो लगा कि आप आज बात नहीं होगा।
5: अच्छा,
4: 95 बार फोन किए हैं तब लगा।
5: अच्छा, कॉल तो लगी गया, तो बता दीजिए अपनी फरमाइश।
4: खेसरिया है कोई गाना सुना दीजिए।
5: कौन सा?
4: कोई भी।
5: आप इतना मुश्किल से कॉल किए, आप बताते तो बहुत ही अच्छा होता।
4: अच्छा अच्छा, नैहर में कलम चबा गई नहीं, बहुत अच्छा गाना है।
5: जी
4: जी,
5: और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
4: आपका, सबसे पहले आपका और पूरा गोपालगंज जिला को।
5: ओके जी, तो चलिए पवन जी आपका गाना हम प्ले करते हैं।
4: जी जी, नमस्ते।
5: जी नमस्ते।
6: ए जी, यूज

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: धन्यवाद आपको
1: जी। नाम बता दीजिए।
0: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया, दूध बांट रहे हैं। हमको भी एक गीत सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: मुझे मैंने ध्यान किया था, मैं भूल गया भीड़ के चक्कर में। हाँ, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारा,
1: मुझे गा के बताएंगे आप दो लाइन?
0: गाना गाने में मुझे नहीं आता, बस खाली सुनता हूँ मैं, बस फरमाइश करने का शौक और सुनता हूँ।
1: चलिए कोई बात नहीं, एक बार और बता दीजिए गाने के बोल।
0: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारा, आपका नाम?
1: जी मैं मनोरमा।
0: अच्छा अच्छा, आपसे परसों मेरी बात हुई थी ना?
1: जी शायद
0: शुक्रवार को मेरी आपसे बात हुई थी।
1: जी जी।
0: ऐसा ना कि अब आपकी और भारती जी की आवाज ना मुझे मतलब मिलता जुलता लगता है, इसलिए मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, कार्यक्रम तो पूरा हम सुनते हैं, वीडियो भेजते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि मैं किसको फीडबैक भेज रहा हूँ, मनोरमा जी को भेज रहा हूँ कि भारती जी। जब लोग नाम लेके करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ सुनने का।
1: जी जी। चलिए, वैसे आप लोग शो से जुड़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: हम लोग तो जुड़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा देर से फीडबैक भेज पाते हैं, लेकिन जुड़े तो मैं 12 बजे जुड़ जाता हूँ। दूध ही बांटना होता है, दूध बांट के फ्री होता हूँ, जैसे फ्री होता हूँ तो फीडबैक भेज देता हूँ, फरमाइश भेज देता हूँ, और आज तो मेरी फरमाइश का दिन भी है।
1: चलिए तो फिर इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: जी जी। नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone kindi bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, राम वालेकुम, क्या खरीद है?
7: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैम, मेरा फोन उठाने के लिए थैंक यू। मैं कब से फोन लगा रही हूँ।
7: अच्छा जी, तो
6: बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आपसे बात करने के लिए।
7: अच्छा जी,
6: हाँ, आप मनोरमा मैम है ना?
7: जी
6: हाँ।
7: आप
6: बताइए मैम
7: जी,
6: घर में सब कोई ठीक है?
7: जी जी, सब कुछ बढ़िया है। और आप ठीक हैं?
6: हाँ, खाना खा ली है?
7: हाँ जी, खाना खा ली। और आप खाई हैं?
6: नहीं, मैं तो बना रही हूँ।
7: जो बन रहा है तो नाश्ता की है?
6: हाँ।
7: ये बढ़िया है। और आपका बाबू कैसे हैं?
6: बाबू ठीक है, इसका मतलब आप पहचान गए हमको।
7: जी जी, आप जोया जी बोल रही है ना?
6: हाँ। और सब बताइए?
7: जी सब बढ़िया।
6: हाँ, आज टीका लगने वाला था, लेके जाए थी इसको टीका लगाने के लिए, लेकिन नहीं लगा, अगला उसको लगेगा।
7: अच्छा, लगवा लीजिएगा टाइम से तो सही रहेगा।
6: मेरे को गाना सुना है मैं।
7: बता दीजिए।
6: तो दिल है कि चाहते कहीं लगा ले, लेकिन यही वाला फोन सुनना है।
7: जी जी, गाना तो बहुत ही अच्छा है, क्या ये गा के मुझे बताइएगा?
6: मैम, मेरे को ये गाना गाना नहीं आता।
7: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपसे गाना गवा के ही फरमाइश पूरी करेंगे।
6: अच्छा ठीक है।
7: मैं गाना, जी जी, आपको भी गाना सुनवाएंगे हम।
6: ठीक है मैम, तो यही गाना बजाइएगा।
7: जी जी, चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: ठीक है, थैंक यू मैम।
7: जी वेलकम, करिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी। तो
0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: आलिया मंसूरी।
1: और कहाँ?
0: बलवंत सागर।
1: अच्छा जी, तो आलिया जी क्या हेलो मैच में पहली बार कॉल की है?
0: हाँ, पहली बार कॉल की है।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको रेडियो रिंकिन का?
0: बहुत अच्छा लगता है, गाना सुनना है हमको।
1: बता दीजिए
0: शायद कौन सा सॉन्ग? कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। शायद
1: कौन से लोग सैड सॉन्ग?
0: हाँ,
1: तो आप इतना मुश्किल से कॉल की है आलिया जी, आप ही बताती तो अच्छा होता।
0: नहीं, कोई भी सुना दीजिए, फर्स्ट बार की है ना इसलिए।
1: अच्छा जी, कोई बात नहीं, फर्स्ट बार की है तो सोच लीजिए कौन सा गाना आप सुनिएगा। आपको टाइम दे रहे हैं हम।
0: नहीं, सोचिए नहीं, कोई भी गाना सुना दीजिएगा शायद कौन सिंह का।
1: अच्छा, चलिए। और गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: आपको आज शायद रेडियो रिंगिंग सुनने वालों को।
1: ओके आलिया जी, वैसे आलिया जी आप ये रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनती है? मोबाइल ऐप के जरिए या फिर FM के माध्यम से?
0: मोबाइल से।
1: अच्छा जी,
0: वो बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मोबाइल यूज करते हैं।
1: अच्छा जी, मतलब मोबाइल ऐप के जरिए सुनती हैं।
0: हाँ,
1: तो फिर आलिया जी चलिए आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ठीक है, थैंक यू
1: जी। रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
6: नमस्ते मैडम
7: जी। नमस्ते,
6: क्या समाचार था
7: जी? समाचार तो ठीक बा, अपन बताइए रवा कैसन बानी।
6: क्या होता, खाना पीना हो गल बा
7: जी?
6: हमारा एक गाना सुनने के बाद।
7: जी जी बिल्कुल सुना। पहले अपन नाम बता दी।
6: हम मिंटू बोलते हैं।
7: कहाँ से?
6: चौकी से।
7: कहाँ से बोलते हैं रवा?
6: चौकी से।
7: अच्छा, ये कहाँ पड़ेगा?
6: करवारा योर पकुबीपुर।
7: अच्छा अच्छा, रवा हेलो मैचेस में पहली बार कॉल के लिए बानी। अच्छा, कौन सा गाना सुने?
6: हम लॉलीपॉप वाला गाना सुने।
7: लॉलीपॉप पवन सिंह के?
6: हाँ।
7: चलिए, गाना तो बहुत ही अच्छा बा।
6: हाँ।
7: वही गाना हमके दो लाइन गा के सुना सकते नहीं?
6: हाँ। तू लगावे जब लिपस्टिक ले ला आ दिस्टिक लॉलीपॉप लागे लुटियाला।
7: जी जी, और ये गाना कैसे सुनाए के विचार तनी?
6: हाँ, हमारे एगो दोस्त बारी माला उनका के एगो बबली करी उनकरा के आ फिर से पूजा के जूही के रवा के जितना रेडियो रिमझिम सुने वाले सबके।
7: अच्छा जी, चलिए तो फिर एक साथ ही गाना हम प्ले करते हैं।
6: थैंक यू मैम
7: जी। सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: गाना सुनना था।
0: बता दीजिए।
1: भोजपुरी सॉन्ग है। हेलो।
0: हाँ कौन सा?
1: हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देहले पानी।
0: ओके है। ऐसे आप अपना नाम बता दीजिए।
1: आप भारती जी को सुना दीजिएगा।
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे, तो इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप अपना नाम बता दीजिए। हेलो।
1: हाँ
0: आप प्रीति जी बोल रही हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा चलिए, तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: मेरा नाम प्रीति है, भारती को सुना दीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है।
0: ओके तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
0: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: नमस्कार
6: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी, मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरा से।
6: जी, कैसे हैं आप?
7: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
6: जी, मैं भी बढ़िया हूँ।
7: काम भी और तो पूछ रहे हैं, खाना पीना हो गया, नाश्ता हो गया?
6: जी हो गया। और आपका हुआ खाना? असर पड़ रहा है।
7: मेरा नहीं हुआ है।
6: क्यों?
7: अब कुछ खाना है ना, उल्टा पुल्टा दिन लोग जैसे पूछते हैं वैसे ही हमने पूछ दिया।
6: जी जी,
7: हम मौसम कैसे मैडम?
6: जी, मौसम तो ठीक है,
7: पूछने का आधार है।
6: जी, भले लोग खाए ना खाए।
7: खाए ना खाए।
6: जी
7: और क्या क्या लोग पूछते हैं।

0: मैडम, और सब सुनाइए।
1: तो और सब बढ़िया है? आपकी तरफ मौसम कैसा है?
0: हमारे तरफ कल बारिश हुआ था।
1: अच्छा
0: गोपालगंज में भी बारिश हुआ था कल।
1: जी, कल तो हुआ था।
0: हाँ तो कल आपके तरफ उधर हुआ कि नहीं? जा रेडियो स्टेशन है, उधर हुआ कि नहीं?
1: जी, हुआ था सुबह में।
0: आइए जो है ना, आप चले जाइएगा उधर पूरब। कल गए थे हम बढ़िया का, और इधर ही पानी हुआ है। बढ़िया के बाद उधर पानी हुआ ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ कल यही घूम रहे थे चारों तरफ। कम से कम 100 किलोमीटर का चक्कर लगाया कल यही तो घूमने में। हाँ
1: चलिए, बढ़िया है।
0: बहुत बहुत दूर दूर जाके घूमे, कहाँ कहाँ पानी हुआ है उसको पता लगाया है।
1: जी, बाढ़ की संभावना भी तो।
0: बाढ़ का संभावना तो खत्म हो गया। उधर छपरा का लोग झेल रहा है, हम
1: जी,
0: लोग के तरफ इधर गोपालगंज बचा हुआ है, बच गया।
1: जी।
0: एक तो छोटा मोटा उधर गेम उधर है, मुजफ्फरपुर पटना वैशाली इतना है उधर। गोपालगंज में सही है, गोपालगंज में कुछ नहीं।
1: जी,
0: मैडम गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए।
0: आप बातें में भाना?
1: नहीं,
0: अच्छा
1: आवाज से कंफ्यूज रहते हैं।
0: हम बराबर कंफ्यूज हो जाते हैं,
1: अच्छा
0: देते जाते हैं क्या। अच्छा मैडम तो बात हो गई, क्या था
1: जी, फरमाइश बता दीजिए।
0: फरमाइश हम बता रहे,
1: जी
0: झूठ बोले कौवे काटे हैं।
1: अच्छा
0: यही गाना बजा दीजिए।
1: ओके
0: जिस तरीके से हम बात आज किए हैं ना मैडम आपसे,
1: जी,
0: उसमें गाना ये सूटेबल आता है कि झूठ बोले कौवे काटे, काले कौवे से डरियो।
1: जी, और गाना डेडिकेट भी करिएगा
0: डेडिकेट किसके नाम में कर दे मैडम?
1: जिनको आप डेडिकेट करना चाहते हैं उनको कर दीजिए।
0: हम ये डेडिकेट रहेगा। चलिए नाम तो भारती जी के ले लिए हैं, आज भारती जी के नाम में डेडिकेट रहेगा। खुदा ना खाता कहीं सुन लिए वो, जिसके पास फरमाइश जाता है तो उसके नाम में डेडिकेट नहीं, जो फरमाइश नहीं ले रहा है नहीं करा रहा है तो उसके नाम में डेडिकेट। चलिए भी आज पटांगे हुआ, भारती जी के नाम में डेडिकेट रहेगा।
1: चलिए तो फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
0: ओके थैंक यू।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM
1: नमस्ते मैडम जी। बहुत चिंता जा रहा है रहुआ।
0: जी। नमस्ते, आप काकरी फोन आवत रहता तो
1: हाँ, फोन आता रहता है। एक आध सोता था, बतियाते बतियाते 20 मिनट लगा देता।
0: अच्छा।
1: दूसरा सोता था नंबर लिखे और बतियाव चाहे 2 मिनट 3 मिनट, और ये सोता के तो नंबर चाहिए।
0: जी
1: सबको तो मैं हमारा गाना फरमाइश हो जाए, हमारा गाना फरमाइश हो जाए, सोता था पूरा टाइम।
0: जी। चलिए, अब और फोन लाग गई बात, फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: गाना सुना दीजिए बंजारन फिल्म का, कभी आएगा मेरे बंजार।
0: अच्छा, वैसे नाम बता दीजिए अपना।
1: तो मैडम
0: जी, बिल्कुल ठीक
1: हम
0: बात
1: बहुत सारे 1 हफ्ता के बाद से फोन कर।
0: और जो गाना बतेनी, वो गाना डेडिकेट भी करे के चाहता नहीं।
1: हाँ, सबसे पहले आपको जितना रेडियो मुझे मार के सब सुनता है भाई, बहुत अच्छे सब दोस्त के साथ।
0: अच्छा ओके, तो चलिए फिर अब गाना हम प्ले करता नहीं।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: प्रणाम
6: जी। प्रणाम।
5: हमारे बात मनोरमा जी से होता क्या की रानी मुखर्जी से?
6: समझ नहीं रहुआ।
5: हमारे तो भैया रानी मुखर्जी से होता बात।
6: वैसे तो हम पहचान गए नहीं रहुआ के।
5: अच्छा जी, पहचान गए नहीं बनिया के बात भाई। एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद पहचाने खातिर।
6: बहुत लेट हो गई काफी कॉल करे में।
5: क्या करी रोजल, इतना बिजी चला था, क्या कह गाना पाते नहीं थे, टाइम बढ़ते जाता।
6: अरे गाना के क्या बताओ, जब कॉल इतना आ जाता ना क्या भाई बताऊं।
5: तो टाइम बढ़ाते जाते हैं तो कॉल आई ना।
6: तो बाप,
5: आज तो गाना याद नहीं के पड़ो। आई रोजा से सरप्राइज रखे रोजा, वही तो बोली।
6: बिल्कुल,
5: गाना तो हमें याद नहीं थे, रोजा पसंद से गाना सुन आज पसंद से सुने।
6: ठीक बात है। जी जी बिल्कुल,
5: ठीक है। हमारे पसंद से गाना बजाई
6: और डेडिकेट भी करें।
5: डेडिकेट तो जब हमारा पसंद बजाय तो हम सुने। हमारे जितना नाम से जाने वाले, नाम बनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
6: जी जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: राम राम साहू गुना से।
1: जी जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: राम राम साहू गुना से बोल रहे हो।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया है। मैं तीन लड़का आगा बारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जो गाना चाहिए।
1: जी जी, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबको सुनाना चाहूँ मैं तो, या कितना की सुनाऊँ?
1: अच्छा जी,
0: हाँ ठीक है, तो
1: चलिए जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your

0: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: रोगो के स्वागत बा मैम, का हाल बा, कैसन बानी?
2: जी हाल चाल तो ठीक बा, आपन बताई की रोगो कैसन बानी?
1: हमने तो बढ़िया बानी सर, रोगो के जवा से आशीर्वाद से।
2: अच्छा जी,
1: के मनोरमा मैम के बाती मैम
2: पहचानी?
1: पहचान तो तनी कम आवता। बाती मैम
2: जी का लागत
1: ना? मनोरमा मैम बोलते नी
2: जी,
1: तो पहचान गनी हो रोगो पहचानी हम के बोलते नी।
2: हाँ
1: जी,
2: तो मुश्किल बा जी,
1: हम साइकिल राघो जी।
2: जी जी वैसे बताया लग नहीं, लेकिन फिर सोचने की पता ना रहा होगा कि ना
1: तुम बताओगे चाहे।
2: अच्छा
1: जी, बहुत सब पता तो मान लेते, इसको अनारा घर में लाठी चला गई तो कहीं सही लग
2: जाओ। अभी तो और बताए क्या होता?
1: अभी तो और कॉल लगाओ तो नहीं है, बहुत देर से कॉल लगाओ तो नहीं, सोचने की थोड़ा बहुत याद नहीं मैम से।
2: जी जी,
1: आवाज से कहे की वहाँ से आवाज आओ तो पतला बा।
2: अच्छा,
1: पता चल गया, दोबारा रुआ बोलने तब पता चल गया।
2: अच्छा जी,
1: आज सॉन्ग चला दे हम आई मिलन के रात पिक्चर के, कौन भी अपना पसंद से मैं सॉन्ग चला दे, क्या सब मेरे सॉन्ग हमारे फेवरेट सॉन्ग।
2: और क्योंकि डेडिकेट भी करे के चाहता नहीं,
1: पहले तो रोगा के दोनों मैम को, आज इतना लोग सुनाता रेडियो रिम जिम ओम साई टेलर लागू जी के तरफ से सुनाना चाहता
2: नहीं। चलिए तो फिर एक ही साथ गाना हम प्ले करता नहीं
1: जी। ठीक बा मैम, रोगा को प्रणाम बा, आशा भी रेडियो दोस्त को भी प्रणाम बा हमारे तरफ।
2: जी जी, रोगा के भी प्रणाम बा, सबके साथ रेडियो रिम जिम 90.4 एफएम।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम जी।
1: जी नमस्ते,
0: मैं प्रदीप सानी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी प्रदीप जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है, अपना बताइए।
1: जी हम भी बढ़िया है। क्या हो रहा है?
0: काम कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, वैसे प्रदीप जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: दिल्ली से।
1: दिल्ली से, अच्छा।
0: सॉन्ग सुनना था,
1: बता दीजिए।
0: तो नवरात्रि का मैं बालक तू मेरा वाली, ये रिशम कुमार की जो है ना।
1: जी जी, कौन सा एक बार और बता दीजिए।
0: मैं बालक तू माता शेरा वाली।
1: जी जी प्रदीप जी, ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी, मनोरंजन सुनने वाले सभी को, तो आपको भी, सभी दोस्तों को सुनना चाहते
1: हैं। ओके प्रदीप जी, चलिए तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: जी,
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick it up.

0: हेलो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
1: जी मैम नमस्ते।
2: जी नमस्ते,
1: मैं संगम पसवान ग्राम धनौती पोस्ट कटिया थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ मैम।
2: जी संगम जी, कैसे हैं आप?
1: मैम मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? गोपालगंज कैसा है?
2: जी मैं भी बढ़िया हूँ, और यहाँ का भी सब कोई ठीक है।
1: चलिए अच्छी चाहिए। थोड़ा ये हम लोग न्यूज देख रहे हैं तो दिल में डर बन रहा है ना कि बहुत बाढ़ आया हुआ है, सुन रहे हैं।
2: जी जी, बाढ़ तो आया हुआ है लेकिन हमारे तरफ नहीं आया।
1: अच्छा अच्छा, चलिए मैम अच्छी बात है, सब लोग खुशहाल रहे, मस्त रहे।
2: जी जी, तो संगम जी क्या आप हेलो माय चॉइस में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं मैम, मैं तो बहुत दिनों से कॉल करता हूँ, लगता है हमको 2010 के आसपास से मैं कॉल करता हूँ।
2: अच्छा जी
1: जी जी,
2: तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आपसे पहली बार बात हो रही है मुझे।
1: तो शायद आपसे पहली बार बात हो रहा होगा, लेकिन और लोग भी बैठते हैं ना, तो उन लोगों से बहुत सारे बात हुआ है।
2: अच्छा जी
1: जी जी, आपका नाम क्या है मैम?
2: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: अच्छा नहीं मैम, आपसे बात हुआ
2: हुआ है?
1: हाँ हाँ, आपसे बात हुआ है क्योंकि मेरे को याद है।
2: जी जी,
1: मैं कटिया से बोल रहा हूँ, भोरे कटिया से। फिलहाल में मैं अभी पूना में हूँ।
2: जी जी, तो बात हुई है, याद आया मुझे।
1: जी जी, जी मैम आप कैसी हैं और रेडियो रिमझिम पूरा परिवार कैसा है?
2: जी मैं भी ठीक हूँ, और यहाँ के रेडियो रिमझिम के परिवार भी सब कोई बढ़िया है। ऐसे मैं बता दूँ, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है।
1: जी मैम, आपसे भी, आप लोगों से मैं जुड़ता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बहुत खुश होता हूँ कि चलिए मैं भी इस हेलो माय चॉइस का हिस्सा में भाग लिए, मुझे भी बहुत खुशी मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ आज।
2: जी बिल्कुल।

बहे पुरवैया जौना रहिया से जालू फूल खिल जाला गोरी जब मुस्कालू फूल खिल जाला गोरी जब मुस्कालू तुहरे से रात होला अरे तुहरे से भोर इतना गोर बाड़ू हो तुहरे से रात होला अरे तुहरे से भोर।

0: जी मैम।
1: जी जी, आपने तो बहुत ही अच्छा गाना गाया।
0: मैं संगीत का बहुत शौकीन हूँ, मैं संगीत में बहुत मेरा मन लगता है, काम भी करता रहता हूँ तो फिर मेरे को गाना गाने का बहुत मतलब वो है कि अच्छा लगता है।
1: जी जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका गाना।
0: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गाना को इतना आपने प्यार दिया।
1: जी, बहुत ही अच्छा था। और यही गाना सुनिएगा।
0: नहीं मैम, भोजपुरी अपने पसंद का कोई भी गाना मेरे लिए डेडिकेट कर दीजिए। एक मेरा दोस्त है अच्छेलाल प्रजापति, जो देवरिया जिला के रहने वाले हैं, वो हाँ, इसीलिए भाई के चॉइस था कि भोजपुरी गाना कोई अच्छा सा प्ले कीजिएगा।
1: तो संगम जी, आप ही बताते तो बहुत ही अच्छा होता है, वैसे गाना तो इतना अच्छा।
0: तो मेरे मैं बता रहा हूँ, एक गाना है वो प्ले कर दीजिएगा। बताओ जान कौना बदरी में छुपल रहल, बताओ जान कौना दिलावा के बतिया बाड़ा ढेर दिन पे कहलू, दिलावा के बतिया बाड़ा ढेर दिन पे कहलू, बताओ जान कौना बदरी में छिपल रहलू, बताओ जान। यही गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने दोस्त को, ठीक है मैम?
1: जी, गाना तो बहुत ही अच्छा।
0: जी मैम, यही गाना।
1: तो चलिए संगम जी, फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: जी मैम, नमस्ते।
1: जी नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: ठीक है, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार,
0: कैसन बानी रहुआ
1: जी? हम तो ठीक बानी, आपन बताई रहुआ कैसन बानी
0: जी? हम भी बानी, अच्छा बानी। मनोरमा मैम बोलता नहीं?
1: हाँ जी, रहुआ भी अपन नाम बता दी
0: जी। हम पप्पू कुमार बोलता नहीं, पड़रावना बड़रिया से।
1: अच्छा जी, कैसन बानी रहुआ?
0: बस ठीक बानी रहुआ, लेकिन के दुआ आशीर्वाद बा, बढ़िया बा। और सब आजे लोग कैसन बानी
1: जी? सबके बढ़िया बानी। लो बीच कौन सा गाना सुने? आज
0: गाना आज हमरे के सुना दे, मत कर इतना गुरूर चेहरे पे है बेहसी, ऐसा कुछ गाना है, आदमी खिलौना है फिल्म का गाना है।
1: और ये गाना क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं?
0: गाना सुनवाए के बाद उत्तम सोनी जी बानी, सन्यासी बाबा रंजन जी बानी, माँ शंकर भाई बानी, रानी जी बानी, शबनम जी बानी, अनीश बानी, गुड़िया कविता और कमरान रशीद जी बानी, रामा जी भाई बानी, सब के डेलीकेट रही मैम। और सब मैम बढ़िया बा
1: जी? जी सब बढ़िया बा।
0: चलिए ठीक बात, गाना सुना दे
1: जी। चलिए तरह गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो मैम, नमस्ते।
7: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: जी धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं RMC से।
7: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है?
6: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं आपका शो का इंतजार करते हुए। मैम तो अभी तो बहुत टाइम हो गया, हम सोचा अभी टाइम समाप्त हुआ होगा रिकॉर्डिंग का, बाकी तो चलते चलते फोन शामिल हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है।
7: जी जी, तो कॉल तो लग गया, तो बता दीजिए फरमाइश।
6: जी गाने के बोल है, दौलत को दुनिया सलाम करती है, यही गाना सुनना चाहते सुनवाएंगे कितने रेडियो दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
7: ओके सुनील जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
6: धन्यवाद मैम।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: हाँ सब बताइए
0: जी। सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे?
1: हम भी सही हैं।
0: तो क्या हो रहा था?
1: काम हो रहा है।
0: अच्छा,
1: तो फोन लगाते हैं तो लगता ही नहीं है।
0: अच्छा,
1: क्या कोई दुश्मनी है क्या?
0: नहीं नहीं, आप लोग से भला क्या ही दुश्मनी हो सकती है?
1: कौन ठीक कहीं हो सकता है?
0: नहीं नहीं,
1: मेरा नाम है रवि कुमार।
0: और कहाँ से?
1: दिल्ली से।
0: अच्छा,
1: और सब बताइए। काला काला सरिया लाई दी।
0: ये गाना आप गा के बताएंगे मुझे?
1: नहीं, हम नहीं गाते हैं गाना वाना।
0: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है।
1: हाँ।
0: और गाना किसी को सुनवाइएगा भी?
1: हाँ, दिनेश कुमार मिश्रा और आप हैं और भारती में मैं, सोनी में मैं।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029994911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
4: हमारे बजरंगी पुलिस बन गई ने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।